मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 55 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। समाचार होंगे बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले

0: श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हे प्रभु, तेरे सामने हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि मैं मांगूँ या ना मांगूँ, मुझे ऐसी कोई चीज़ कभी न देना जो मुझे अच्छी लगने पर भी मेरा बुरा करने वाली हो और मेरी बुद्धि को कुमार्ग पे ले जाने वाली हो।

जिसकी गांठ में राम हैं उसके पास सब सिद्धियां हैं, उसके आगे अष्ट सिद्धि और नौ निधि हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं।

0: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: लौ तभी लगी समझो जबकि वो कभी न छूटे, जिंदगी भर लौ लगी रहे और मरने पर प्यारे में ही समा जाए, प्रीति इसी का नाम है।

जब मैं था तब हरी नहीं थे और अब हरी हैं मैं नहीं रहा। प्रेम की गली बहुत ही संकरी है, इसमें दो नहीं समा सकते।

0: वंदना, आप सुन रहे थे दीपशिखा सिंह के साथ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
1: जीवन में कभी भी आपको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं अगर नहीं होता तो यह कार्य नहीं होता, मैं नहीं होता तो किसी का कोई कार्य नहीं होता, मैं नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। प्रायः हम इस अहंकार में डूबे रहते हैं कि मैं नहीं रहता, परिवार में भी चाहे संबंधों में भी, मैं नहीं होता तो तुम्हारा पता चलता क्या हो जाता। हनुमान जी महाराज का एक चरित्र है, जब जानकी जी का पता लगा करके हनुमान जी आए और राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से कहा कि तुमने मेरे जीवन का वह कार्य कर दिया, इतने दिनों तक मैं दुखी रहा, जानकी का कोई पता नहीं था और तुमने पता लगा करके मेरा कार्य सिद्ध कर दिया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरे अंदर वह गुण भी नहीं, मेरे अंदर वह बल भी नहीं है। पहली बात तो यह है, किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर अहंकार है तो पतन के लिए वह केवल मात्र अहंकार ही काफ़ी है। हनुमान जी महाराज से प्रभु ने कहा, क्यों, अगर तुम कारण नहीं हो तो जानकी जी का और कोई पता क्यों नहीं लगाया? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं भी पता नहीं लगाया, जिस समय सारी सेनाएं जा रही थी तो आपने किसी को नहीं बुलाया और मुझे बुला करके अपनी मुद्रिका दी और मेरे सर पे हाथ फेरा कि जाओ, अगर जानकी तुम्हें मिले तो तुम इस मुद्रिका को दे देना। तो प्रभु उस मुद्रिका के सहारे मैं लंका पहुंच गया। तो अगर प्रभु मैं अपने बल पौरुष से पहुंचा होता तो मेरे मन में यह होता कि मैं नहीं होता तो क्या होता? प्रभु ने कहा, ठीक है, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम लंका को जला देना। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु धन्य हैं आप, लंका को मैंने जलाया। अगर लंका को मैंने जलाया होता, चाहे लंका को जलाने में मैंने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया होता तो मैं कहता कि मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन लंका को आपने रावण से जलवा दिया, रावण की लंका रावण से जलवा दी और सहायक आप बन गए। मैं कोई ऐसी वस्तुओं को लेकर के नहीं गया था जिससे मैं लंका को जलाने का प्लान लेकर के गया था कि मैं लंका को जलाऊंगा। मुझे हंसी आई कि त्रिजटा ने स्वप्न देखा है कि लंका जलकर के खाक हो गई। मैं सोच रहा था कि मैं कैसी लंका को जलाऊंगा, उर प्रेरक रघुनाथ, प्रेरणा देने वाले आप हो, मैं लंका को कैसे जलाऊंगा, और इसका स्वप्न भी सत्य है। लेकिन धन्य है प्रभु, अगर लंका को मैंने अपनी व्यवस्था से जलाया होता तो मेरे मन में एक अहंकार उठता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो उसके बाद राघवेंद्र सरकार ने कहा, अच्छा ठीक है, लंका भी तुम मेरे कारण जलवाए और यहाँ से मेरी मुद्रिका के सहारे पहुँच गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है जिससे आप मुझे पद प्रतिष्ठा चाहे मेरा सम्मान करिए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लंका पहुँच गए, लंका को जला दिया, तुम वापस आए, वापस आने में कौन सहायक मना? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप को मैंने पिता माना और पराम्बा जगदम्बा स्वरूपा जानकी जी को मैंने माँ माना। जब उनको लगा, मैं भी ये सोचता था कि लंका से अगर मैं वापस चला जाऊँगा अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने वेग से, तो मेरे मन में यह प्रश्न रहता, मेरे मन में हमेशा यह भाव रहता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो मैया ने अपना चूड़ामणि उतार के दे दिया, चूड़ामणि उतार तब लेहूँ हर समेत पवन सुत लेहूँ। उस चूड़ामणि को लेकर के मैं आपके पास चला आया तो विचार करिए कि हर पग पग पर मुझे लगा कि आप मेरी सहायता कर रहे हो। तो जीवन में जब आपके साथ कुछ अच्छा चल रहा हो, अच्छा हो रहा हो, तो यह विचार करना चाहिए कि लोग आपके सहायक की भूमिका में हैं इसलिए आपका अच्छा चल रहा है। इसलिए अच्छा नहीं चल रहा है कि आप अहम में यह करो कि मैं नहीं होता तो क्या होता। जिन हनुमान जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार जी के एक बार कहने पर लंका पहुँचे, जानकी जी का पता लगाए, लंका को जलाए, इतना बड़ा बड़ा कार्य करने के बाद भी हनुमान जी कहते, प्रभु अगर आपने वह सब नहीं किया तो मेरा सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने किया होता तो मैं का भाव है, मैं का जो एक अहम है वह मेरे मन के अंदर रहता। इसलिए जीवन में कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं होता तो क्या होता।
0: यह था हमारा आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:31 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। आकाशवाणी के 90 वर्षों पर आधारित कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स सुबह 8:45 पर। देशगान का समय होगा 9:25 और सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर, जिसमें आज के कलाकार हैं मेहंदी हसन।

और 11:30 पर गीतांजलि। लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक रंग। सुबह 11:05 पर कलाकार होंगी नूरजहां बेगम। दोपहर 12:00 समय होगा नाटक का। नाटक का शीर्षक है एक लोरी वयस्कों के लिए। दोपहर 12:30 पर गाने सुहाने। 12:55 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में मेहंदी हसन। बहनों का कार्यक्रम होगा नारी जगत। समय दोपहर 1:15 पर, जिसे लेके आएंगी रागनी श्रीवास्तव। खेती किसानी का समय होगा 1:50, जिसमें आज आप डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव से विनय कुमार की बातचीत सुनेंगे। विषय है खरीफ सब्जियों की प्रजातियां। शाम 5:05 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाड़ी, और बच्चों के लिए होगी बालवाड़ी 5:35 पर। खेतीबाड़ी का समय होगा 6:10 और लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा 6:45 पर। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।
1: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details, log on to www.ddindia.com।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में वृक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में अमूल्य योगदान दें। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त हो चला है समाचारों का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। तटीये आन्ध्रप्रदेशे तेलङ्गानायां पश्चिममध्यप्रदेशे पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस् यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस् यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। विनम्र व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, पराजित वे होते हैं जो विनम्रता स्वीकार नहीं करते। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार होंगे बस थोड़ी देर में।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
5: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
3: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन

0: पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
1: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके चार पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्यक्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। इस बार सिर्फ घरों की गिनती ही नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी जनगणना का हिस्सा बन रही है। अभियान के पहले ही दिन 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। गोरखपुर में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें 11,000 से अधिक प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
2: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज, यानी कि अराउंड 600-800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है। और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल बांदा लगातार 6ठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी और उरई में 45.4 डिग्री सेल्सियस और आगरा में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
3: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: देश में कल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
6: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए सुनिए अगर तो

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। वक्त है समाचारों का।
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और

0: पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHYRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
5: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं।

0: इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की आठवीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
5: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including ministries of railways, home affairs, health and family welfare, and department of higher education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
4: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26. Marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said, Later in the day, US Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the US ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honor of a Cyprus counterpart, Nikos Christodoulidis, and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान साझा मूल्यों विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
4: President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, also highlighted the friendship with India.
7: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
4: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
8: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gawani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
4: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
9: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. As part of our series, People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan.
10: मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात। मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
4: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this conversation on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99 rupees 51 paise per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92 rupees 49 paise per litre. This is the third revision in fuel rates in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. The Madhya Pradesh government has taken an important step towards Uniform Civil Code, UCC. Chief Minister Mohan Yadav launched the website ucc.mp.gov.in at the Secretariat yesterday. Through this portal, citizens, political parties and social organizations can share their views and suggestions on the proposed UCC. The last date for submitting feedback is 15th of June this year. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange colour warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Meanwhile, Madhya Pradesh continues to reel under intense heat wave conditions. We have a report from our correspondent.
11: The Met Department has issued heat wave warnings in 42 districts today. Tikamgarh, Chhatarpur and Panna are the worst affected. All three are under red alert. Gwalior and 20 other districts are under orange alert for severe heat wave. Bhopal, Indore and 16 other districts are under yellow alert. Yesterday, the temperature crossed 44 degrees Celsius in 10 cities. Nugaon in Chhatarpur district was the hottest place in the state. The mercury touched 46.8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begun yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
4: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad, SRH, defeated Royal Challengers Bengaluru, RCB, by 55 runs in Hyderabad last night. Chasing a massive target of 256 runs set by SRH, RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
12: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India Cyprus Inc. Six Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled She Put In Meat, A New Axis in the Making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
4: Thank you, Dina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: Akashvani se pesh hai khabarnama. Adab. Khabarname ke saath main Zameer Rizvi. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरारनामे में तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले चार रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकरारशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरारनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
14: रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरारनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकरारी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे, जिनमें रेलवेज, दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
13: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी, जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। यह फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में, जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं, 27.60% का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने चार रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा, जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तावुन को وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور نے ہوائی اڈے پر جناب روبیو کا استقبال کیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کولکاتہ میں اپنے قیام کے دوران جناب روبیو مدر ہاؤس، سینٹ ٹیریسا مشنریز آف چیریٹی اور شہر کے چلڈرن ہوم کا دورہ کریں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کا سفر کریں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ امریکی سفیر کے مطابق یہ دورہ بنیادی طور پر دفاعی شراکت داریوں، جدید ٹیکنالوجیز، تجارتی تعلقات اور کواڈ فریم ورک کے تحت اشتراک جیسے اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور قبرص کے درمیان سیمی کنڈکٹرز، خلا اور مصنوعی ذہانت جیسے نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ راشٹرپتی بھون میں کل قبرص کے اپنے ہم منصب نکولاس کرسٹوڈولائڈس اور ان کے وفد کو دیے گئے اشائیے کے بعد صدر جمہوریہ اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کے میدانوں کے طور پر ابھرے ہیں۔
6: 1962 میں ہمارے راجنے سمبندھوں کی استھاپت کے بعد سے ہی بھارت اور سائپرس ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہماری جانچی پور کی مترتا اب سے سنمان، ساجا ملیہ، وشواس اور ایک جٹتا پر آدھارت ہے۔ آنے والے برسوں میں بھارت سائپرس کے ساتھ اپنے ویاپک سہیوگ کو آگے بڑھانے کے لیے اتسک ہے۔ مجھے پورن وشواس ہے کہ آپ کے مارگ درشن اور نیتو کے ساتھ ہماری مترتا نرنتر سدرڑ ہوتی جائے گی۔
13: صدر جمہوریہ نے سرحد پار دہشت گردی اور کثیر جہتی اداروں میں اصلاحات جیسے اہم معاملوں پر قبرص کی حمایت کی ستائش کی۔ صدر جمہوریہ نے قبرص کی سالمیت، اتحاد اور علاقائی یکجہتی کے تئیں بھارت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک ساجیداری میں بدل دیا گیا ہے جو بھارت اور قبرص کے درمیان بڑھتی سوجھ بوجھ، گہرائی اور باہمی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کی افسر میجر ابھیلاشا براک کو، جو لبنان میں اقوام متحدہ کے قیام امن مشن میں خدمات انجام دے رہی ہیں، اقوام متحدہ کے 2025 کے ایک باوقار ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ اس سال کی فوجی صنفی وکیل کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ میجر براک، جو فی الحال ایک بھارتی بٹالین میں لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس میں خواتین کی سرگرمی والی ٹیم کی کمانڈر یو این آئی ایف آئی ایل کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، بھارتی فوج کے جنگجو ہیلی کاپٹر کی پہلی خاتون پائلٹ بھی ہیں۔ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی میجر براک تیسری بھارتی قیام امن فوجی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس سے پہلے میجر سمن گوانی کو سال 2019 میں جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کے تحت خدمات انجام دینے پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، اور میجر رادھیکا سین کو سال 2023 میں اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ انہیں یہ ایوارڈ جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ کے استحکام مشن کے تحت ان کی خدمات پر دیا گیا تھا۔ بھارت تبت سرحد پولیس آئی ٹی بی پی نے ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچنے والی ابھی تک کی پہلی ایسی بین الاقوامی کوہ پیما مہم مکمل کر لی ہے جو صرف خواتین پر مشتمل ہے۔ یہ کامیابی اس فوج کی کوہ پیمائی کے میدان میں تاریخی سنگ میل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
15: آئی ٹی بی پی کی ایک 14 رکنی کوہ پیما ٹیم نے، جو 11 خواتین، 3 تکنیکی ماہرین اور مددگار عملے پر مشتمل ہے، اس ماہ کی 21 تاریخ کو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی سر کر لی۔ اس مہم کو 19 اپریل کو آئی ٹی بی پی کے صدر دفتر سے روانہ کیا گیا تھا۔ اپنی ہمالیہ صاف کرو اور گلیشیئر کو محفوظ کرو مہم کے تحت ٹیم نے ماحولیاتی بیداری کی سرگرمیاں انجام دیں اور ایوریسٹ خطے سے نان بائیو ڈیگریڈیبل کچرے کو اکٹھا کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹیم کو ماؤنٹ ایوریسٹ پر قومی جھنڈا پھہرانے پر مبارکباد دی۔ جناب شاہ نے کہا کہ اس بلند ترین علاقے اور سخت آب و ہوا کے حالات میں یہ قابل تحسین کارنامہ انجام دے کر ٹیم نے آئی ٹی بی پی کے خود سے پہلے ملک کے موٹو کی شان برقرار رکھی ہے۔ جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم پیر۔
13: آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ 10 دن سے بھی کم مدت میں یہ تیسرا اضافہ ہے۔ دلی میں پیٹرول کی قیمت میں 87 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ 99 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 91 پیسے کا اضافہ ہو کر یہ 92 روپے 49 پیسے لیٹر ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ ایران تنازع اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹ کے سبب خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اچانک اضافے کے دوران ہوا ہے۔ इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में ख़रीदारी ना करें और ईंधन की ख़रीदारी अपनी असल ज़रूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मज़ीद कहा कि ज़िम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज़्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसा सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में UCC.MP.GOV.IN वेबसाइट का आगाज़ किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजवजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। CBSE ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्क ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस के मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद ये फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 ज़िलों में भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज़्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
14: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर ज़िलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों में दर्ज हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
13: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीक़ेकार में एक बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं, इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वो अपने शौहर अब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। IPL क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
14: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोफर ग्लाइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। روزانہ پرتاب انقلاب نے وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کواڈ ممالک کی وزارت خارجہ کی میٹنگ 26 تاریخ کو منعقد ہوگی، جس میں شرکت کے لیے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزارت خارجہ بھارت آئیں گے۔ اس موقع پر بھارت بحر الکاہل خطے اور باہمی مفادات کے بین الاقوامی مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔ راجیہ سبھا کی 26 سیٹوں پر انتخابات 18 جون کو ہوں گے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ اس بات کا اعلان انتخابی کمیشن نے کل کیا۔
13: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج مختلف سرکاری محکموں میں نئے بھرتی کیے گئے افراد کو 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کریں گے۔ آر بی آئی نے مالی سال 2025-26 کے لیے 2.86 لاکھ کروڑ روپے کی ریکارڈ اضافی رقم مرکزی حکومت کو سونپنے کی اجازت دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے اپنے پہلے 4 روزہ دورے پر کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج دوپہر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارتی فوج کے افسر میجر ابھیلاشا براک کو سال 2025 کا اقوام متحدہ کی فوجی صنفی وکیل کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
16: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित फिल्म संगीत का ये सफ़र तय करते हैं दीपशिखा सिंह के साथ। आकाशवाणी भारत की सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है। इसकी यात्रा 1920 के दशक से शुरू हुई और आज ये दुनिया का सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है।

आकाशवाणी शब्द का अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज़। रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता रेडियो स्टेशन के लिए इसी शीर्षक से एक कविता लिखी थी, जिससे प्रेरित होकर बाद में इस नाम को अपनाया गया।

आकाशवाणी का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, जिसका अर्थ है सबके हित और सबकी खुशी के लिए।

आकाशवाणी दुनिया के उन गिने चुने रेडियो नेटवर्कों में से है जो इतनी अधिक भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी ने देश भर में सूचना और शिक्षा का सबसे भरोसेमंद साधन बनकर उभरा है।

0: आकाशवाणी सरल शब्दों में आप तक सूचनाओं को प्रेषित करता है और मनोरंजक और शिक्षाप्रद होते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित कार्यक्रमों का सफ़र आपने तय किया दीपशिखा सिंह के साथ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम लखनऊ से।
1: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
3: इटावा के बुद्धा पार्क में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 14 करोड़ लागत से होने वाले 11 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सरकार के द्वारा महिलाओं को हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। इससे महिलाएं समाज में अपना हक प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड नागरिक सुरक्षा मंत्री व जनपद इटावा के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संसद में नारी शक्ति से जुड़े विधेयकों के विरोध को लेकर कांग्रेस सपा पर तीखा हमला बोला। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि 16 व 17 अप्रैल को संसद में पेश महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुँचाई है। कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है, इसे साबित किया है जसवंत नगर की प्रख्या भदौरिया ने। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर प्रख्या ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रख्या भदौरिया ने 600 में से 582 अंक प्राप्त कर 97% के साथ यूपी टॉप 5 में जगह बनाई। प्रख्या ने बताया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके IPS बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इटावा पुलिस लाइन ग्राउंड में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि DIG हरीश चंद्र ने 483 महिला आरक्षी रिक्रूट की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से DGP और मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुना गया। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने महिला आरक्षियों की लगन और ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए बधाई दी। DIG ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया और ईमानदारी कार्यकुशलता के साथ ड्यूटी करने का मंत्र दिया। इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 1,05,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि जिले में 9,849 स्वयं सहायता समूह एक्टिव हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंचनद ब्रांड की स्थापना की गई है। इसके तहत 18 सरस शॉप और 4 कैंटीन खोली गई है जिन्हें समूह की महिलाएं ही चला रही है। पंचनद ब्रांड के अचार, साबुन, फिनाइल, मसाले का उत्पादन हो रहा है। इटावा के विकास भवन में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह और बड़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। विधायक ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि 1,286 शिक्षा मित्रों के खाते में बढ़ा हुआ मानदेय भेज दिया गया है। कार्यक्रम में 10 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक भी दिए गए। इटावा में यमुना की सफाई पर DFO विकास नायक ने सख्त रुख खाया है। जिला गंगा समिति की बैठक में उन्होंने STP चालू न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि 8-9 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, गंदा पानी सीधे यमुना में बह रहा है। उन्होंने आउटलेट का सैंपल जांचने और यमुना के किनारे सफाई के निर्देश दिए। वृक्षारोपण में इमली के ज्यादा पौधे लगाने और ट्री गार्ड से सुरक्षा करने को कहा। भरतना में सभी MRF सेंटर चालू कराने के आदेश भी दिए हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के ऊर्जा बचत अपील को समर्थन दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से कहा कि कार की जगह बाइक, ई रिक्शा या साइकिल से कचहरी आए। दूर से आने वाले वकील कारपूल बनाकर चले। DBA अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सभी वकील अब ऊर्जा बचत से देश की प्रगति में योगदान देंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का समर्थन करते हुए समस्त वकील जितना अधिक से अधिक डीजल बचाकर राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। हम सब वकील अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल की बचत करेंगे। जो लोग कार से आते हैं वो लोग कारपूल बनाकर चले अथवा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। जितना हो सके ऊर्जा को बचाने का प्रयास करें।
3: इटावा में राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेरणा सभागार में 102 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया और 10 को बढ़े हुए मानदेय के चेक दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। राज्य मंत्री ने CM योगी को बधाई दी। लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इटावा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 206 केसों में बरामद 5,774 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने कानपुर देहात के इंसिनेटर प्लांट में वीडियोग्राफी के साथ पूरे मादक पदार्थ जलाए।
5: उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद इटावा पुलिस द्वारा बड़ी एवं उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर NDPS एक्ट के अंतर्गत

0: पंजीकृत कुल 206 अभियोगों में बरामद लगभग 5,775 किलोग्राम मादक पदार्थों का नियमानुसार विनिष्टीकरण कराया गया। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में अवैध गांजा, डोडा, स्मैक, चरस एवं अफीम तथा अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं।
1: इंसानों के साथ अब जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बब्बर शेरों के नाइट सेल में खस की चटाई और डेजर्ट कूलर लगे हैं। ब्रीडिंग सेंटर में शेरनी और सावकों के लिए एयर कंडीशनर चल रहे हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि क्रॉल और सफारी क्षेत्र में फॉगर सावर से तापमान कम किया जा रहा है।
2: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं, तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
1: गर्मी को देखते हुए सफारी का समय भी बदला गया है। सुबह 6:30 बजे से पर्यटकों के लिए सफारी खुल रही है ताकि दोपहर की धूप से बचा जा सके।
3: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
4: जनपद हमीरपुर में पिछले 3-4 दिनों में गर्मी ने 6 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 मई को 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही उल्टी दस्त डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेज गर्मी के कारण सड़कों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के वक्त बाहर न निकलें, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना ताजा भोजन ही करें। सत्तू, बेल का शरबत, आम का पना, नारियल पानी और फलों का जूस आदि का सेवन अधिक करें। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। जनपद हमीरपुर के सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि गोल्डन मोडर्नाइजेशन स्कीम को आकर्षक बनाया जाए, घरों में रखी पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल कर नई ज्वेलरी बनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुलियन व बार की खरीद को कुछ समय के लिए टाला जाए। व्यापारियों ने अपने इस सुझाव से संबंधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को फिर से पोस्टपेड करने के आदेश का जनपद हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया है। इस फैसले से उपभोक्ता खुश हैं, क्योंकि अब आए दिन बिजली कटने की समस्या से उपभोक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। अधीक्षण अभियंता ज्ञान चंद यादव कहते हैं कि सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड करने का सरकार ने निर्णय लिया है। करीब 1 सप्ताह में ही सभी मीटरों को पोस्टपेड में बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर हर माह का बिल भेज दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका भी मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है वह मीटर अकाउंट में अपना नंबर जरूर पंजीकृत करा लें। जनपद हमीरपुर के संचालित 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नौनिहालों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पका हुआ ताजा व पौष्टिक आहार परोसने का सरकार ने निर्णय किया है, जिससे अब केंद्रों में सूखा पुष्टाहार वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि नौनिहालों व प्रसूताओं को आटे बेसन का हलवा, बर्फी तथा स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई जाएगी। 6 माह से 3 माह के सामान्य बच्चों को शिशु अमृत व शिशु आहार के तहत आटा बेसन का मीठा हलवा और 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों को बाल पुष्टकर के रूप में आटा बेसन की मीठी बर्फी और नमकीन दलिया व मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहत में सुधार की ओर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे राशन की कालाबाजारी आदि में भी रोक लगेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सभी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को ताजा व पौष्टिक पोषाहार खिलाया जाएगा। अब सूखा दाल, दलिया, पंजीरी, रिफाइंड आदि का वितरण नहीं होगा। इस माह सभी ब्लॉकों में नेफेड द्वारा राशन सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सप्ताह में एक दिन शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चे श्रमदान करते हुए दिखाई दें तो इसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत न किया जाए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाएगा। उस दिन सभी शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित होगी। अभियान के तहत जो स्कूल स्वच्छ और सुंदर होंगे उन स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: कई कई सफ़े काले कर दे और शायद वो असर पैदा तब भी ना कर सके। बेशक जिंदगी में कोई भी चाशनी नहीं होती, दहर में अगर लोगों शायरी नहीं होती। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में इंतखाब किया है कलाम शायर का। तो आइए आपको सुनवाते हैं नाब बाकर जैदी से उनका कलाम उन्हीं की आवाज़ में।
1: गजल का मतलब समाप्त फरमाएं।

0: बंजर नहीं है हमारा दिल, कोई पत्थर नहीं।
1: ये थे जनाब बाकर जैदी जो अपने खूबसूरत कलाम से हम सबको महसूस कर रहे थे। और समीन, अब घड़ी की सुइयों का इशारा हमें समझ लेना चाहिए, अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रबाब अंजुम को रामपुर रेडियो मरकज़ से आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दें। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अलविदा।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार हैं मेहंदी हसन, इनको सुनेंगे छोटे से अंतराल के बाद।
3: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार थे मेहंदी हसन। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। समाचार होंगे बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: तुम्हें।
1: यश डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। साथ ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ेगा। अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री आज ही नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने मायामी में मीडिया से बात करते हुए भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार देश बताया। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैठक में कहा, बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हाय हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग में आज एक कलाकार हैं नूरजहां बेगम।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में अभी आप नूरजहां बेगम और सखियों को सुन रहे थे। अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल

0: होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है। और आइए सुनते हैं लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में नूरजहां बेगम और उनके सखियों के स्वर में ये गीत।

अभी अब लोकगीतों के कार्यक्रम में लोक रंग में नूरजहां बेगम और सखियों के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं और प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। एक छोटे से अंतराल के बाद

साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीतांजलि में एक गीतकार और संगीतकार दोनों के एक मोहब्बत के प्यार भरी वादे को इस गीत में सुनते हैं। कहते हैं, अगर तुम साथ देने का वादा करो। ये गीत जिंदगी और मोहब्बत का एक खूबसूरत लकीर खींचने वाले साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत है। फिल्म है हमराज में। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: अभी आप हमराज फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से सुनें।
1: भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं।

0: उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लंबर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लंबर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं, तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है, और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं, स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है, और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक एक लोरी वयस्कों के लिए।

0: नागाहारू, दुनिया में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं?
1: शायद मर्यादाएं टूट जाती हैं, तब लड़ाइयाँ होती हैं।
0: लेकिन लोग आखिर लड़ते ही क्यों हैं?
1: कुमी, शायद मर्यादाएं टूटने के बाद लड़ाई का शौक पैदा हो जाता है।
0: क्या लड़कर उन्हें शांति मिलती है?
1: मेरे ख्याल से जरूर मिलती होगी। और कुमी, मैं ये भी बता दूं, शायद चोट खाकर उन्हें खुशी ही होती हो।
0: फिर तो वो खुशी से मरते होंगे।
1: हाँ, शायद।
0: सुनो नागाहारू, क्या हम भी लड़ाई नहीं छेड़ सकते?
1: लड़ाई?
0: हाँ, अपनी लड़ाई।
1: अपनी लड़ाई? लेकिन किससे?
0: किससे? हाँ, किससे? अच्छा मान लो, अगर हम लोग किसी को तहखाने में बुलाएं।
1: तहखाने में?
0: हाँ, हम पूछें, क्या आप आज शाम खाली हैं? अगर वो कहें हाँ, तो उन्हें तहखाने में बुला लें।
1: हाँ, हो तो सकता है, लेकिन हम बुलाएंगे किन्हें?
0: किन्हें? जिन्होंने हम लोगों की हत्या की थी, हम उन्हें बुलाएं तो कैसा रहे?
1: हाँ, अच्छा रहेगा। अपने माँ बाप को ही बुलाते हैं, क्यों?
0: ठीक, बिल्कुल ठीक।

0: वो बड़ी लंबी सीढ़ियां हैं, नहीं?
1: हाँ, जैसे भूतों की कहानियों वाली सीढ़ियां उतर रहे हैं हम लोग।
0: कौन सी सीढ़ियां?
1: मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। लगता है अभी किसी कोने से कोई प्रेत निकल कर आ खड़ा होगा।
0: नहीं, लेकिन नीचे उतरना आसान है। दोबारा इतनी सीढ़ियां चढ़कर वापस लौटना ज्यादा मुश्किल है। मुझे हर कदम पर लग रहा है जैसे भूतों की मान नजदीक आती जा रही है।
1: मेरी तो सांस ही फूल गई है। कलेजी में अजीब बैठन सी हो रही है। लगता है जैसे जैसे सीढ़ियां उतरेंगे सांस लेना मुश्किल होता जाएगा।
0: नहीं, ला, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े लेती।
1: मैं कोई बच्चा हूँ?
0: ओह, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी।
1: जोर से मत बोलो, मेरा तो दिल ही रुक जाएगा। देख लेगा तो क्या कहेगा कि

0: Gott, mein Junge! Da war der Kollege ja!
1: Oh, könnte ich nicht, Kollege.
0: Kollege, der konnte die Keime da, ja!
1: Dumm, kommt weg, noch!
0: Oh, mein Hüppel, Junge, ich buschliert. Ja,
1: mit langem Hecht und Kollege, beim Sohn, da gar kein Weg, oh, na! Du, Renner, Hecht, du, mein Dorwase, die darauf hat, ja, sie,
2: oh! Jessa, Gott. बात यह है यहां तेरा कितना है देखो सही लो खिड़की से कुछ दिखाई देता है क्या
1: मुझे तो लगता है हमारा किसी ने अपहरण किया है हमें यहां बंद कर लिया है
2: अपहरण
3: अजीब बात है जी वे बच्चे
2: क्या वो बच्चे
3: मेरा मतलब है उन्होंने कितनी मुलायमियत और इसरार भरी आवाज में हमें बुलाया था और फिर कितनी शिष्टता से बातें की थी
2: हाँ यहाँ आने पर उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा था माफ कीजिएगा हमारी वजह से आपको कुछ देर रुकना पड़ा हम मेहरबानी करके सीढ़ियों से होकर नीचे उतरे
3: हाँ, बिल्कुल इसी तरह कहा था लेकिन तुम्हारी ही गलती है तुम ही उनसे मिलने को इतने उतावले हो गए थे तुम्ही ने फटाफट सीढ़ियां उतरना भी शुरू कर दिया था
2: बात यह है मुझे लगा कि वो लोग शायद किसी और के धोखे में हमें बुला बैठे हैं मुझे थोड़ी उत्सुकता हो गई और इसमें क्या है कहा ही कुछ ऐसे गया था कि मैं मजबूर हो गया
3: तो लेकिन अब होगा क्या क्या खिड़की तोड़ोगे
2: खिड़की अच्छा कांच बेहद मजबूत है
3: दोनों जोर लगाकर देखें शायद दरवाजा ही खुल जाए
2: दरवाजा चलो आओ

0: बेकार है, सुना बेकार है, नहीं खुलेगा।
1: हाँ, नहीं खुलेगा,
0: नहीं खुलेगा। सुनो, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें इस तरह बाहों में लिया है। युग बीत गए, तुम्हारे शरीर की गंध।
1: छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। इस बंद कमरे से नफरत हो रही है।
0: याद है, याद है तुम्हें, कभी मैं तुम्हारी बाहों को सूंघा करता था। फिर यकायक जाने क्या हुआ, बरसों का जुड़ा हुआ रिश्ता यकायक दिए की तरह बुझ गया।
1: छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, मुझे इस कमरे से डर लग रहा है।
0: तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी कर दी थी और मैं बहुत दूर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा था, लेकिन वो दिन,
1: पता नहीं ये कमरा इतना अंधेरा और गोल क्यों है।
0: दीवारें चौकोर भी तो हो सकती थी।
1: बस करो, बस करो, चौकोर दीवारों वाला होता तो और भी डरावना हो जाता। नहीं, मुझे चौकोर मकानों से और ज्यादा डर लगता है।
0: शायद चौकोर मुर्दा घर,
1: चौकोर संदूक,
0: चौकोर।
2: रोने की क्या जरूरत है,
0: मैं माफी चाहता हूं कि मैं
1: शायद कोई आ रहा है। पता नहीं किसी ने हमारी बातें सुन न ली हो। अभी तक तो ये रास सिर्फ हम दोनों के बीच ही है।
3: ओ, मुझे सड़क की दुर्घटनाएं अच्छी

0: अच्छी लगती है वयस्क
1: ये वही लगता है
2: वही
1: याद है बसंत का मौसम था। हमने उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसे दराज में बंद कर दिया था। उसके छटपटाते हुए हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिए थे।
3: मेरा दम घुट रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। कमरा, ये कमरा घूम क्यों रहा है?
0: कीजिएगा, हमने आपको काफी इंतजार कराया। हमारी वजह से आपको असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
3: लेकिन इस तरह हमें यहां बंद करने का मतलब क्या था?
0: हमने सिर्फ सीढ़ियां उतरने को कहा था, लेकिन आप खुद यहां इस कमरे में आ गए।
3: ठीक है, लेकिन अब हमें यहां से बाहर निकालो।
0: ये दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है।
1: लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है, इनका दिल कमजोर है। ये कह रहे थे कि कमरा घूम रहा है।
0: आपको घूमता हुआ महसूस नहीं हुआ? कमरा तो सचमुच घूम रहा था, ये बना ही ऐसा है।
3: तुम हो कौन? क्या चाहते हो?
0: आपने मुझे पहचाना नहीं? मम्मी, मैं नागाहारू हूँ।
1: नागाहारू? कौन नागाहारू?
0: मैं। ये देखिए कागज का टुकड़ा जो आपने लिखकर लगाया था। ये बच्चा 23 अप्रैल को पैदा हुआ था और इसका नाम था नागाहारू। नागाहारू मतलब लंबा वसंत।
1: दिन वो पैदा हुआ।
3: सोच समझ कर बोलो और किसी के सामने इस तरह मत उगलने लग जाओ।
0: डैडी, क्या आप इससे इनकार करते हैं?
3: इनकार करने न करने का क्या सवाल है? इस कागज पर न तो तारीख लिखी है, ना नाम, कुछ नहीं लिखा, मुझे मालूम है।
0: ओ ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हैं आप जैसा मैंने सोचा था। डैडी, सच ये है कि वो इबारत मिटा ही दी गई थी, जैसे मैं इस दुनिया से जन्मते ही मिटा दिया गया था। क्यों मम्मी? मुझे याद है, मेरा मुंह बांधने के बाद मेरा दम घोट दिया गया था और मेरे ऊपर प्लास्टर चढ़ाकर 1.5 बरस मुझे एक दराज में बंद रखा गया था।
1: लेकिन हम क्या करते? हम तो तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां। हाँ, परिस्थितियां। दुनिया में बिना शादी किए पैदा हुए बच्चे का कलंक।
0: लेकिन क्या मुझे प्लास्टर में बंद करना जरूरी था?
1: कब्र तो प्लास्टर की ही होती है ना।
0: कब्र? ठीक है, देख रहे हैं आप, मेरी माँ ने स्वीकार किया कि उसने मेरी हत्या की थी।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हालांकि अब इससे क्या फर्क पड़ना कि मुझे मारा गया या नहीं।
1: तुम थोड़े से बड़े होते तो खेलने का मकान बनाने वाले लकड़ी के गुटकों से खूब खेलते।
3: देखो जी, तुम किसी ऐसे सवाल का जवाब मत दे बैठना जिस राज खुल जाने का डर हो।
0: तुम ठीक कहती हो मम्मी, मुझे बीते वक्त की याद आ रही है। वो देखो, छोटी छोटी खिड़कियां, लकड़ी के गुटकों की दीवारें और छत।
4: ओहो,
5: ये गुटके ठीक से नहीं सजाए थे नागारू।
4: देखी ना डैडी, सारा मकान गिर पड़ा।

0: कॉफी ले लो जी।
1: वाह, इसी की जरूरत महसूस हो रही थी, लाओ।
0: नागा हारू, अच्छे बच्चे, आओ तुम्हें एक संतरा छील दूं।
2: छील दो, मुझे बहुत काम है, पूरा मकान बनाना है।
1: सुनो, तुम थोड़ी दुबली नहीं हो गई हो?
0: चलो, तुम्हारा ध्यान तो गया।
2: एक के ऊपर ये दूसरा, देखता हूँ कैसे नहीं बनता। गिरेगा? अच्छा गिर जा, मैं फिर बनाऊंगा।
1: सुनो जी,
0: क्या है?
1: इधर आओ ना।
0: क्या है?
1: लगता है तुम फिर माँ बनने वाली हो।
0: तुम्हें मालूम हो गया?
1: कॉफी में चीनी कम है।
0: डाली तो।
1: चलो रहने दो, तुम्हें नागाहरू के लिए संतरे छीलने का वक्त मिल जाता है। मेरी कॉफी ठीक से बनाना मुश्किल लगता है।
0: फिर वही, पता है तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते।
1: हाँ ये सही है, हमारी शादी नहीं हुई है, हम बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? दुनिया क्या कहेगी, ये नाजायज बच्चे। नागाहरू, सुना तुमने, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे भी और तुम्हारी माँ को।
2: मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया, हाँ मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया।
0: नागारू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नागारू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
3: थैंक यू मम्मी। कुछ लोग कहते हैं इस तरह जन्म देने के बाद बच्चे की हत्या कर देना एक सामाजिक पागलपन है। बहुत विकसित देश इसे शायद किसी और रूप में देखें। हो सकता है इसका संबंध युद्ध से हो, यानी युद्ध लोगों को नई जिंदगी का दुश्मन बना देता है। जो भी हो, चलिए मेरे मुंह पर भी लपेट दीजिए प्लीज मम्मी। अलविदा, अलविदा डैडी।
0: ओ, कितनी अच्छी बातें बोल रहा था, नहीं?
1: हाँ, खासी।
0: लेकिन यहाँ से निकलने का कोई उपाय हुआ ही नहीं।
1: इंतजार करो, हो सकता है रास्ता निकले। कमरा घूमना तो शायद बंद हो गया।
0: वैसे सच कहूँ, अब इस अकेले कमरे में उतना बुरा नहीं लग रहा। कितने लंबे अरसे बाद हम लोग इस तरह अकेले मिले हैं।
1: हाँ, बच्चों की हत्या करने के बाद तो जैसे तूफान ही आ गया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी उस धूर्त से कर दी थी और मैं निराश होकर शहर छोड़कर चला गया था। अजीब लग रहा है इतने दिनों के बाद मिलकर।
0: थोड़े दिनों में फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। पराया पराया।
1: फोन, तुम सुनो।
0: ये चिकने अकेले कमरे में टेलीफोन कहाँ होगा?
1: ऐसी घंटी टेलीफोन ही की होती है, देख लो ना, शायद गिटार के अंदर है। कितनी जबरदस्त आवाज गूंज रही है।
0: हेलो, हेलो,
4: हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मैं कौन हूँ, आपने पहचाना? अच्छा बताइए, मैं कौन बोल रही हूँ? आप जानती हैं, आपके कुछ शब्द पंख फड़फड़ाते हुए मेरे पास आए थे। मम्मी, आपके शब्द मैं सहेज कर रखना चाहती थी।
0: मम्मी, तुम हो कौन? तुम मुझे मम्मी कह रही हो, कहीं तुम?
4: आपने ठीक समझा मम्मी, मेरा तो कोई नाम ही नहीं था, मैंने खुद अपना नाम रख लिया, कुमी, यानी चिर सुंदर। अच्छा है।
0: हेलो, हेलो, एक मिनट। मिनट ठहरो।
5: सुनो जी,
1: क्या है, कौन है फोन पर?
0: वही लड़की है, मैं पहचान गई। उसने उसने अपना नाम गुमी रखा है।
1: लाओ फोन मुझे दो। हेलो हेलो, हाँ, क्या तुम्हारा मतलब है तुम मेरी बेटी हो? वैसे मैं बता दूं, मेरी कानूनी संतान कोई नहीं है।
4: माफ करिए डैडी, कानूनी संतान क्या होती है? मुझे मेरे भाई के साथ जन्म लेते ही मार दिया गया था ना। मुझे याद है, आपने मुझे एक प्लास्टिक की थैली में बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना होगा। मम्मी, मैं सर्द हो गई हूँ, मुझे नींद आ रही है।
1: सुनो कुमी, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अब तो तुम बड़ी हो गई होगी।
4: बहुत दुबली हूँ डैडी, पिरामिड में बंद लाश की तरह मैंने एक मोमजामा पहन रखा है।
1: कुमी, तुम्हारा एक भाई है, तुम्हें पता है, क्या तुम उससे मिलोगी?
4: काश मैं हिल भी पाती। मैं बाहर नहीं आ सकती ना। अब तो यही एक रास्ता है कि आप लोग यहाँ आ जाएं।
0: क्या?
1: लेकिन कुमी, इस कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है।
4: वहाँ कमरे में एक गिटार है ना?
1: हाँ है, तो फर्श पर रखा है। इसी के अंदर तो टेलीफोन है।
4: उसी टेलीफोन के तार को खूब जोर से खींचिए, ठीक गिटार के आकार का ही एक रास्ता फर्श में खुल जाएगा। उस रास्ते से नीचे अंधेरी सीढ़ियां चली गई हैं। एक बार में सिर्फ एक ही सीढ़ी उतरें और टेलीफोन के तार के सहारे चलते जाएं। आखिर में अंधेरे में आपको एक सफेद दरवाजा मिलेगा। वही कुमी के कमरे का दरवाजा है। ये दरवाजा भी सिर्फ बाहर से खुलता है।
1: ठीक है, मैं समझ गया। लो, इस तार को खींचने में मदद तो करो जरा। ओह, इन सीढ़ियों पर इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है मैं नींद में चल रहा हूं।
4: आओ मम्मी।
0: तुम कुमी हो?
4: हाँ, मैं कुमी हूँ, हूँ ना डैडी?
1: तुम ही हमारा बच्चों में से एक लगती हो जिन्होंने हमें यहाँ फंसाया है।
0: देखो जी, अब तुम चुप रहो तुम। ये गोल वाला कमरा नहीं, रेफ्रिजरेटर है। कुमी, कुमी बेटे, मुझे अफसोस है बेटे, हमें माफ कर सकोगी?
1: मेरा दिल फिर धड़कने लगा है, लगा है कमरा घूम रहा है।
4: आप लोग ठीक से सोए नहीं है शायद।
0: नींद आती कहाँ है, अक्सर तुम दोनों की तस्वीर आंखों के सामने घूमती रहती है।
4: अब तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं? सोच कर देखिए।
0: क्या सोचूं?
1: कुमी, हमें यहाँ से बाहर निकाल लो ना। देखो कुमी, देखो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। हम तो यही सोच कर आए थे, हमारी प्यारी कुमी हमारी मदद जरूर करेगी।
4: मम्मी से पूछिए, अभी और कितने बच्चों की हत्या करनी है?
1: तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो कुमी? हमने जो कुछ किया था मजबूरी में किया था। कुमी, मेरी बात तो सुनो।
6: हेलो कुमी, सब ठीक चल रहा है वहाँ?
7: बेहद घिसे-पिटे जवाब है इनके पास।
6: अरे तो गोली मारो, अब तुम बाहर आ जाओ।
7: ये मम्मी डैडी का क्या करें?
6: उन्हें छोड़ दो, अभी ये कमरा इतनी तेजी से घूमेगा तो उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा।
7: ठीक है, अलविदा मम्मी, अलविदा डैडी।

0: पता नहीं वो मर गए या जिंदा है।
1: कौन?
0: मम्मी और डैडी।
1: इतनी आसानी से तो नहीं ही मरे होंगे।
0: हाँ, हमें उन्होंने कितनी आसानी से मार दिया था। हमारे पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था।
1: हम अब कहाँ जाएंगे?
0: किसी और मम्मी डैडी की तलाश में।
1: किसी और की?
0: हाँ, उनकी तलाश में जिनके डर से मम्मी और डैडी ने हमें जान से मार दिया था।
1: वो कहाँ मिलेंगे?
0: वो हर कहीं हर जगह। उनकी पहली उंगली बड़ी फुर्तीली होती है, बड़ी जल्दी उठती है। वो पापी है, वो कलंकिनी है, वो अवैध है। कितनी फुर्ती से उनकी तर्जनी उठती है।
1: ठीक है, हम ऐसी ही फुर्तीली तर्जनी वाले लोगों को खोजेंगे।
0: आओ चलें।
1: चलो।

अभी आप सुन रहे थे नाटक एक लोरी वयस्कों के लिए। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के 90 साल के इस लंबे सफर की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन का इतिहास नहीं, बल्कि ये आज़ाद होते भारत, बदलते भारत और डिजिटल होते भारत की जीती जागती कहानी है। इस कहानी में कुछ गाने, कुछ कहानियाँ, कुछ संगीत, कुछ मधुर मीठी मीठी बातें, सब कुछ इस रेडियो के अंदर रहता है जो हम आप तक पहुँचाते हैं। और आइए चलिए इस मधुर आवाज़ के माध्यम से एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं रेडियो की इस कहानी में। कहते हैं कभी कभी मोहब्बत का इजहार करने वाले भी जमाने से डर जाते हैं और कहते हैं छोड़ दो आजल, जमाना क्या कहेगा।

अभी आप पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थीं आशा भोसले और किशोर कुमार की। संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। और आइए फिर बात होती है उस दौर की जहां रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने को हैं। ज़रा सोचिए एक छोटी सी शुरुआत जून 1936 में जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। आइए इस प्यारे से नेटवर्क में ही हम अपने इस प्यारे से गीत को सुनते हैं। कहते हैं कि प्यार इंसान को बहुत सपने दिखाता है। कभी कभी फूलों का शहर होता है तो कभी फूलों की बगिया होती है, लेकिन जागने पर सिर्फ सफ़ेद कागज़ की तरह ज़िंदगी दिखती है।

अभी आप फिल्म लव स्टोरी का ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अमित कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत यह था राहुल देव बर्मन ने। और श्रोताओं, आइए फिर से एक बार रेडियो की इस कहानी से जुड़ते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी की गूंज और राष्ट्र की आवाज़ को जब जन जन तक पहुंचाने की बात आई थी, तो रेडियो ही एक ऐसी सुंदर विधा थी, सशक्त विधा थी, जो हमारे देश की हर बात जन जन तक पहुंचाने में रेडियो ने अपनी भूमिका अदा की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण आकाशवाणी के माध्यम से दिया गया था। देश के कोने कोने पे हर समाचार रेडियो के माध्यम से ही पहुंचाया जा रहा था। और आइए दोस्तों, इसी कड़ी में एक गीत सुनते हैं।

अभी आप बॉर्डर फिल्म का ये गीत सुन रहे थे और आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में ये गीत। कहते हैं कि कभी कभी हम लहरों से भी करते हैं कुछ मीठी मीठी बातें, होती है जब ही ये बातें जब हम होते हैं सागर के किनारे।

अभी आप सागर फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: अभी आप मेहदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल सुन रहे थे। इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें सुनेंगे।
1: आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 19वीं रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नए भर्ती होने वाले नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामे तकसीम किए। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर के हजारों नौजवानों के लिए आज का दिन बहुत अहम है।
2: आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर मुमलकत बीएल वर्मन लखनऊ में तकरीबन 330 अहलकारों को तकरीरनामे तकसीम किए। ये रोजगार मेला लखनऊ समेत मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद किया गया। मरकजी हुकूमत अब तक 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को शफाफ तरीके से नौकरियां दे चुकी हैं। वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन तमाम नौतैनात नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने अवामी फलाही इकदाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले में कल रियासत में घरों की गिनती और फहरिस्त साजी शुरू हुई। इस सिलसिले में शुमार कुंदगान और निगरानों ने रियासत के 3,89,312 घरों की फहरिस्तबंदी के ब्लॉक्स में सर्वे का काम शुरू किया। इस दौरान लखनऊ में वजीर आला की रिहायशगाह, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल को भी शुमार किया गया। इस मरतबा न सिर्फ घरों की गिनती बल्कि रियासत की तारीखी और सकाफती शिनाख्त भी मर्दमशुमारी का हिस्सा बन रही है। मुहिम के पहले ही दिन 1,35,00,000 से ज्यादा घरों पर मर्दमशुमारी के घरों

0: के नंबर लगाए गए हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन कल मुल्क भर में शुरू की गई। इसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए सपोर्ट सिस्टम को मुस्तहकम करना है। जीवन ऐप सरकारी फलाही स्कीमों, हंगामी इमदाद और बुजुर्ग शहरियों की रिहाइश के बारे में मालूमात फराहम करेगी। वजारत जल शक्ति के पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे की तरफ से जारी करदा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का बेहतरीन जिला करार दिया गया। रियासतों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। वाराणसी के चीफ डेवलपमेंट अफसर प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि यह सर्वे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मुल्क के देहातों में सफाई की असल हालत का जायजा लेने के लिए किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने दर्जे 12 के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी शीटों की स्कैनशुदा कॉपियां हासिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया है। CBSE ने यह फैसला अपनी वेबसाइट पर दरखास्तों में इजाफे और तकनीकी खराबियों के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट यकम जुलाई से नवी जमात के तलबा के लिए तीन जबानों को लाजमी करार देने के CBSE के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत करेगी। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली और जस्टिस जॉय मालिया बागची और विपुल एम पंचोली पर मुश्तमिल बंच के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुफाद आमा की अर्जी तलबा, इसातजा और वालदैन ने दायर की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया। ईंधन की कीमतों में ये तीसरी नजरेसानी है, जिसमें 15 मई को 3 रुपये फी लीटर, 19 मई को 90 पैसे का इजाफा हुआ। ये इजाफा ईरान के तनाजे और अबनाए हरमूज में रुकावटों के बाद आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान हुआ है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में वाकई झांसा गांव में देर रात सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे सोए हुए खानदान को कुचल दिया। हादसे में जख्मी होने वाली एक खातून को तश्वीशनाक हालत में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिफर किया गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आज IPL क्रिकेट मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात रियासत को अपनी लपेट में ले रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बांदा कल लगातार 6ठे दिन रियासत का गर्म तरीन जिला रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी इलाकों में दिन के वक्त हीट वेव की वार्निंग जारी की है। लखनऊ महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने कहा कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल के तूफान की भी तवक्को है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए उनका कार्यक्रम नारी जगत। आज नारी जगत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं रंजना मिश्रा।
2: नारी जगत सुनने वाली सभी बहनों को रंजना का नमस्कार। बहनों, कहते हैं सबसे बड़ा धन निरोगी काया है, तो चलिए आज सबसे पहले इसी धन की बात करते हैं, यानी सेहत की। क्योंकि कभी कभी सामान्य से लगने वाले लक्षण भी किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, या कभी कभी शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव या असंतुलन के कारण भी ये लक्षण हो सकते हैं। बहनों, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन तब होता है जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और थायराइड जैसे हार्मोन्स का स्तर सामान्य से बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसका मुख्य कारण अनियमित लाइफस्टाइल, तनाव, PCOS है, जो थकान, अनियमित पीरियड्स और वजन बढ़ने का कारण बनते हैं। तो बहनों, इसकी वजह से कभी कभी चेहरे पर अत्यधिक मुहासे होते हैं या त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई या ऑयली भी हो जाती है। वजन कभी अचानक से बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़ास करके पेट के आसपास बिना किसी कारण के तेज़ी से वजन बढ़ता है। साथ ही बहनों, कई बार तो हार्मोनल असंतुलन की वजह से सिर के बाल अत्यधिक झड़ते हैं और पतले हो जाते हैं, और कभी कभी तो चेहरे पर भी रोएं से आ जाते हैं। लगातार थकान, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग जैसी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। बहनों, ये तो हुई बात लक्षणों की, अब बात करते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर्स के अनुसार हार्मोनल असंतुलन का सबसे आम और महत्वपूर्ण कारण पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। थायराइड का बहुत ज़्यादा बढ़ना या कम होना, बहनों अत्यधिक तनाव और पोषण की कमी से भी हार्मोनल असंतुलन होता है। इसके साथ ही उम्र के एक पड़ाव यानी लगभग 40 से 50 की उम्र पर प्राकृतिक रूप से हार्मोन्स कम होने लगते हैं यानी मेनोपॉज, तब तमाम शारीरिक परेशानियों का सामना करना होता है। इसलिए मनो रखिए अपना ख्याल, अपने डाइट में फाइबर, हरी सब्जियां और ओमेगा 3 से भरपूर आहार लें, रोज़ाना योग करें। डॉक्टर्स के अनुसार ऐसे में अनुलोम विलोम भ्रामरी करने की सलाह देते हैं जिससे हार्मोन्स असंतुलित नहीं होते हैं, संतुलित रहते हैं और तनाव कम होता है। इन सब के अलावा बहनों अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें, तब जब लगातार अनियमित मासिक धर्म हो, लगातार मनोदशा में उतार चढ़ाव हो, गर्भधारण करने में कठिनाई हो रही हो, नींद ना आ रही हो। तो बहनों चलिए अब सेहत की इन बातों के साथ अब आपके मन को करते हैं तरोताज़ा इस गीत के साथ।

बेनो, इस गीत के बाद आइए चलते हैं एक ऐसे जीवन शैली की ओर जहां हम कम संसाधन में भी रह लें। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं मिनिमलिस्ट लिविंग की, यानी न्यूनतम जीवन शैली की, जहां हमें गैर ज़रूरी सामानों से दूर रहकर केवल उन्हीं चीज़ों के साथ जीना है जिनकी वास्तव में आवश्यकता होती है, यानी दिखावे से बहुत दूर चलना है। सचमुच ये जीवन शैली मानसिक तनाव तो कम करती ही है, पैसे भी बचाती है और खुशी और स्पष्टता भी लाती है। तो चलिए बात करते हैं इसे अपनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों पर नज़र दौड़ाइए जिसका इस्तेमाल आपने 6 महीने से किया ही नहीं है। सबसे पहले उन्हें बेच दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और बहनों, कई बार तो ऑफ़र्स के चक्कर में भी हम लोग बहुत सी चीज़ें मार्केट से ले आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमेशा बहुत सारे सस्ते और कम गुणवत्ता वाले सामान खरीदने के बजाय कुछ अच्छी और टिकाऊ चीज़ें ही खरीदें। अब आते हैं डिजिटल डिटॉक्स पर। जी बहनों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने फ़ोन से अनावश्यक ऐप्स हटाने हैं और नोटिफिकेशन बंद करने हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को भी कम करना होगा। और भाई, सबसे ज़रूरी है कि कुछ भी नया खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं। यानी खरीदारी जब भी हो तो समझदारी से।

बहनों, इस गीत के बाद कुछ बातें रसोई की हो जाएं, क्योंकि बहनों जब भी हम किचन में नाश्ता बनाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सबका टेस्ट अलग-अलग होता है। वहीं बच्चों की बात की जाए तो उनके नखरे तो अलग ही होते हैं। जहां बड़े सेहत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो तला भुना वो कम भी खाना चाहते हैं, तो वहीं बच्चे रोज़ चटपटा और वैरायटी ढूंढते हैं। ऐसे में बहनों आप सोचती होंगी कि क्या ऐसा बना लिया जाए जो सभी के टेस्ट और सेहत के हिसाब से हो। और भाई सुबह के नाश्ते की बात की जाए तो चीला, पोहा, उपमा, फरा, ढोकला, इडली जैसे नाश्ता हम कम तेल में या बिना तेल के भी बना सकते हैं। और लंच की बात की जाए तो दाल को मिक्स बनाकर स्वाद और सेहत दोनों ही ला सकते हैं। उसी तरह से रोटी में मल्टीग्रेन आटा यूज़ करके उसे पोषक तत्वों से भरपूर बना सकते हैं। सब्जियों की बात की जाए बहनों तो हम मिक्स वेज बनाकर उसे रोटी में रैप करके बच्चों को दे सकते हैं। हम उसमें उनके पसंद के छोटे छोटे पनीर के टुकड़े और चीज़ भी डाल सकते हैं। वही बच्चों को तो साग खिलाना मम्मी लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। ऐसे में हम इसे फ्राई करके पीस कर आटे में मिलाकर पूड़ी पराठा बनाकर खिला सकते हैं। बहनों हमने तो कई बार मम्मी लोगों को सूप बनाकर उसमें नूडल्स डालकर खिलाते हुए भी देखा है बच्चों को। वो सोचती हैं कि कम से कम इसी बहाने से ही बच्चे सब्जियों का सूप तो पी लेंगे। इसी तरह से बहनों अगर कई तरह के दाल को भिगोकर पीसकर उसकी टिकिया या कबाब बनाया जाए तो भी ये सभी को पसंद आएगा। हम चाहें तो उसमें कुछ हरे मटर, थोड़े बहुत साग के पत्ते भी डाल सकते हैं। ऐसे ही पत्ता गोभी, गाजर, मटर, स्प्रिंग ऑनियन और उबले हुए आलू, हरी धनिया और हरी मिर्च मिलाकर कटलेट भी बना सकते हैं। मैंने जो चीज़ें बच्चों को पसंद हो उसी में मिलाकर उसे खिलाने से बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। इसी तरह से बहनों शाम की चाय में हम भिगोए हुए या अंकुरित चने मूंग को स्टीम करके उसकी चाट भी बनाकर दे सकते हैं, जिसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी खजूर की चटनी, मीठी खट्टी वाली, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और थोड़े से महीन नमकीन के साथ उसे अगर सर्व किया जाए तो फिर क्या स्वाद आता है। और हम चाहें तो इसमें महीन काटकर खीरा और प्याज भी डाल सकते हैं, और फिर ऊपर से इन चटनियों से सजाइए हरी धनिया की पत्ती डाल के और चाव से खाइए। और बहनों इस चटपटे से रेसिपी के बाद अब आइए सुनते हैं ये मीठा सा गीत।

और बहनों, इस गीत के बाद बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो गैर पेंशनधारी महिलाओं के लिए खास है। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की, जो कि भारत सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। ये असंगठित महिला श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान करती है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी इसमें समानुपाती योगदान दिया जाता है। अब बात करते हैं PMSYM योजना में नामांकन करने के लिए आवेदकों की आवश्यकताएं क्या हैं। तो बहनों, सबसे पहले तो आवेदिका को असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए, जैसे घरेलू कामगार, रिक्शा चालिका, सड़क निर्माण श्रमिक। साथ ही आवेदिका की आयु 18 से 40 के बीच होनी चाहिए और मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। आधार कार्ड और जनधन खाता पासबुक होना चाहिए, जिसमें IFSC कोड होना ज़रूरी है। मैंने इस योजना की मुख्य विशेषता और लाभ ये है कि लाभार्थी महिला को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर हर माह 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि लाभार्थी का निधन हो जाता है तो जीवन साथी गारंटीकृत राशि के 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन के हकदार होते हैं। इस योजना के तहत ग्राहक को उनकी प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान करना होता है और केंद्र सरकार भी उतनी ही समान राशि का अंशदान करती है। अब बात आती है आवेदन कैसे करें। तो बहनों, इसके लिए पात्र महिला ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मानधन पोर्टल के माध्यम से सीधे आवेदन करें और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमी VLE की सहायता से पंजीकरण कराने के लिए निकटतम सामान्य सेवा केंद्र पर जाएं। तो बहनों, अगर आपके पास आसपास भी कोई है जिसे इस योजना की आवश्यकता है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। क्या पता आपकी ये छोटी सी सलाह या जानकारी उनके खुशी की बड़ी वजह बन जाए। और अब इन बातों के बाद चलिए आप भी मुस्कुराइए इस गीत के साथ।

0: मैनू इस गीत के साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को रंजना का नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत। आज नारी जगत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी रंजना मिश्रा। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी। खेती किसानी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए खरीफ सब्जियों की प्रजाति विषय पर डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव से की गई बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।
1: सब्जी का उत्पादन बारहोमास कईल जाला, खास तौर से जब खरीफ ऋतु में सब्जी लगावला का बात आवेले तो एकर तैयारी पहले से करे के पड़ी। काहे कि बहुत ऐसा सब्जी बाड़ी जौन जायद में भी उत्पन्न होली और उहे सब्जी बा तौन खरीफ में भी लगेला। प्रजाति अलग हो सकेला, ओकरे प्रजाति का विशेषता अलग हो सकेला, लगावला आ तैयारी का समय अलग अलग हो सकेला, लेकिन जवन खरीफ में सब्जी लगावल जाला ओकर प्रजाति का है। बहुत लोग हम कि जायद में लगाए वाली खरीफ में खरीफ वाला जायद में यह तरह से लगा देला, पौधा तो खूब बढ़ेला लेकिन उसमें बतिया ना लगी। अगर बतिया लगतो बा तो मर गई या कम उत्पादन मिलल। तो अभी पर्याप्त समय बा कि खरीफ में कौन कौन सब्जी का खेती करे के चाही और बढ़िया प्रजाति का है। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव कृषि विज्ञान केंद्र मलहना जनपद देवरिया से फोन लाइन पर जुड़ल हूँ आ एकरे बारे में विधिवत जानकारी डॉक्टर साहब दें।
2: ये देखा गया कि जो हम ज्यादातर वो सब्जियां जो जायद में होती हैं वही खरीफ में भी होती हैं। तो जायद में और खरीफ में प्रजातियां कोई किसी किसी की कोई प्रजाति अलग नहीं, तो करीब करीब प्रजातियां वही यूज होती हैं, वही प्रयोग की जाती हैं। अब ये देखा जा रहा है कि जो खरीफ मौसम आने वाला है इसमें जो प्रमुख फसलें हमारी अब लगाई जाएंगी उसमें आपको भिंडी है, बोड़ा या जिसको हम लोबिया कहते हैं, और कद्दू वर्गीय सब्जी सारी जैसे लौकी है, कोहड़ा है, तरोई है, करेला है, खीरा है, ये सारी जो है सब्जियां खरीफ मौसम में फिर लगाई जाएंगी। इसमें अगर आप देखा जाए जो अच्छी प्रजातियों को ज़्यादातर किसानों को अगर देखा जाए तो बाजार से संकर प्रजाति का ही उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करके और अपने खेत पे लगाते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी उनको संकर प्रजाति सही नहीं मिलती और उसको उनको समस्या होने लगती है और उसका बीज जो है वो अपने पास नहीं रख सकते। तो आज हम कुछ ऐसी प्रजातियों का चर्चा करेंगे जो प्रजातियां आपको संकर प्रजातियों के आसपास की उपज देती हैं और उनका अगर आप बीज बना लेते हैं तो आप उनको अपने अगले सीजन में लगा भी सकते हैं। इस दिशा में जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है जिसी का ये कृषि विज्ञान केंद्र देवरिया वहीं से गवर्न होता है, वहीं से इसका जो है प्रशासनिक नियंत्रण है, वहाँ से जो निकली हुई प्रजातियाँ जो पिछले कई सालों से पृथक परिश्रम द्वारा वैज्ञानिकों के और सब्जियों की नई प्रजातियाँ निकाली गई उन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं बोड़ा या लोबिया पे। लोबिया की प्रजाति देखिए आप पूरे जो है अपने भारत में और खास करके अपने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में सबसे लोकप्रिय जो प्रजाति है वो काशी कंचन के नाम से जानी जा रही है। काशी कंचन जो है बौनी किस्म की प्रजाति है जिसके 60 सेंटीमीटर करीब होती है ऊंचाई और उस पर 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे जो है बोड़े लगते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं और इनकी पैदावार अच्छी होती है। और सबसे अच्छी बात है कि कम दिन में ये 45 से 55 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर करीब फूल आता है और 54-55 दिन में हमें हार्वेस्ट शुरू हो जाती है और 2-3 फसल लेकर के 70-80 दिन के अंदर खाली करके हम चाहे तो तुरंत अगली फसल जो है वो ले सकते हैं। जैसे अगर हम सब्जी की खेती की बात हो रही है तो अगर सब्जी खेती लें तो हम बोड़ा लगा करके और उसके बाद तुरंत हम मटर की खेती या फूल गोभी की खेती करके हम 2 फसल आसानी से लेकर के लाभ ले सकते हैं। दूसरी प्रजाति भी अभी निकली हुई है काशी निधि, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। काशी निधि की फलियां अपेक्षाकृत थोड़ी सी बड़ी हैं और मुलायम है, इसमें बीज थोड़ा कम बनता है इसलिए रेशे की जो है मात्रा कम है। तो इसको आप काशी निधि और काशी कंचन दोनों प्रजातियों को लोबिया के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरी फसल आ रही है भिंडी। भिंडी के लिए काशी क्रांति और काशी प्रगति ये 2 अच्छी प्रजातियां जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। ये भी अच्छी है, इसमें भी आप 50 से 55 दिन के अंदर जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है और अर्ली एकदम आपको भिंडी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर हम बात करें तो कद्दू वर्गीय सब्जी में अगर हम कोहड़ा लेते हैं, कोहड़ा तो कोहड़े में भारतीय सब्जी अनुसंधान द्वारा संस्थान द्वारा विकसित जो है काशी हरित प्रजाति जो छोटी 1.5 से 3 किलो की फसल होती है और उसकी जो लतर है जो बेल है वो भी छोटी होती है, और एक बेल में जो है 4 से 5 फल बढ़िया से मिल जाते हैं, उसको थोड़ा सा नज़दीक लगा करके बढ़िया करके तो आपको एक जो हरा कोहड़ा जो बाजार में आता है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें लौकी, लौकी में जो है अगर आप प्रजाति की देखें तो काशी गंगा एक प्रजाति है, और अगर हम काशी बहार एक संकर प्रजाति भी विकसित की है, जो आप हाइब्रिड बात करते हैं किसान, तो उसमें जो है वो एक काशी बहार प्रजाति का भी उपयोग कर सकते हैं। और अन्य जो है जैसे कि हमारा एक बहुत ही थोड़ा सा अलग टाइप का खेती है पेठा कद्दू की, कुछ एरिया में पेठा कद्दू की खेती बढ़िया की जाती है, और बरसात में जहाँ पे आपके खेत में थोड़ा ऊंचास हो और बहुत बढ़िया खेत नहीं है आपका, जैसे पुराना टीला हो या इस तरह का या कुछ, तो वहाँ पे आप अगर आप छपरावा कद्दू जिसको देहात में कहते हैं पेठा कद्दू की खेती कर लें, उसके लिए काशी उज्ज्वल एक प्रजाति है और उसको आप लेकर के लगा सकते हैं, और काशी धवल, दो प्रजातियां जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। अब अगर हम आते हैं करेला में, करेला में देखा जाए तो दो तीन प्रजातियां जो है, एक बरसात के लिए जो झालरी प्रजाति जिसको कहते हैं या जौनपरी लोकल जो बड़ी वाली प्रजाति है उसको ज्यादा डिमांड करते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। नेनुआ, नेनुआ में जो है वो जो दो तरह की नेनुआ होती है, एक कुछ हरी होती है एक सफेद होती है, तो सफेद नेनुआ में और सफेद नेनुआ के लिए काशी ज्योति और हरे नेनुआ में कुछ अच्छी प्रजातियां निकली हैं, जैसे काशी सौम्या और काशी रक्षिता, इसमें एक संकर भी है और इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से खीरा में जो प्रजाति है उसके लिए आप लोकल प्रजाति का उपयोग करें जो हो, और एक स्वर्ण अगेती नाम की प्रजाति है उसका उपयोग किया जा सकता है। एक नई प्रजाति अभी और को वहाँ से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से अभी डेवलप की जा रही है, विकसित की जा रही है, उसके बीज भी आपको अगले साल से मिल सकते हैं। और एक सतपुतिया होता है जो इस अपने इस क्षेत्र की खास करके पूर्वांचल की बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है, छोटी वाली सतपुतिया गुच्छे में फैलती है, उसके लिए काशी खुशी नाम की प्रजाति है, आप इसको लेकर के लगा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रजातियां हैं ये सीधे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से ली जा सकती हैं, या उसका जो रीजनल सेंटर है उसका जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान उसका है कुशीनगर में, सरगटिया कुशीनगर में, वहां से ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र देवरिया जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के नियंत्रण में ही है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इन तीनों जगह से कहीं से भी इसके बीज ले सकते हैं। आप सीधे जो है निदेशक महोदय को चिट्ठी लिख करके या मेल लेकर के आप अपने पास भी बीज मंगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रजातियां थी जिन जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित है, इनका आप उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छा जानकारी दिलीं कि खरीफ में उगाए वाली सब्जी का प्रजात कौन कौन ह आ एके कैसे प्राप्त कैल जा सकेला, एकर पहचान का ह, एकर विशेषता का ह, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी। खेती किसानी कार्यक्रम में थी ये भेंट वार्ता खरीफ सब्जियों की प्रजाति विषय पर डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव से की गई बातचीत आप सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct, and everyday actions.
4: Karma Yogi प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी. मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है. यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए. विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं.
3: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी. द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एम्ड एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल एक्सपोजर टू द यूथ ऑफ द नेशन.
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
3: मिस्टर मोदी एडेड दैट एवरी इंडियन इज वर्किंग विद अ कमिटमेंट टू मेकिंग इंडिया विकसित भारत बाय 2047 एंड टू अचीव दिस द कंट्री इज इन्वेस्टिंग इन सेवरल सेक्टर्स. द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री.
4: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है.
3: The Prime Minister encouraged the new appointees to make the most of the iGOT Karma Yogi platform, noting that it would help them grasp their responsibilities with ease. Mr. Modi expressed confidence that these new appointees would contribute to the nation's progress and that their work and decisions would play a key role in realizing the vision of Viksit Bharat. In Rajasthan, employment fairs were organized in Jaipur, Jodhpur, Ajmer and Bikaner, where appointment letters were distributed to more than 1,100 youths. Railway Minister Ashwini Vaishnav attended the state-level Rozgar Mela held in Jaipur. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that recruitment for more than 1,60,000 posts in the railways is currently underway, with over 4 crore candidates participating in the process. He said that earlier, recruitment procedures used to take several years to complete, causing delays for job aspirants. However, with the introduction of the annual recruitment calendar system, efforts are now being made to complete the process within a fixed time frame.
5: रेलवे में आज करीब करीब 1 लाख Work is currently underway for approximately 1,60,000 recruitments. You must be aware that previously recruitment used to come out once every 8 to 10 years or once every 4 to 5 years. That was the era of the Congress during the time of the UPA. When Modi ji took responsibility, he compressed that time, and after that, some time ago, an annual calendar system was introduced and a clearly defined timetable was made.
6: Annual calendar ki vyavastha.
3: In Punjab, the 19th Rozgar Mela was organized at two places, including Rail Coach Factory RCF Kapurthala and Patiala Locomotive Works Patiala today, where appointment letters to 281 new beneficiaries were distributed. At RCF Kapurthala, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri, while presiding over the program, said that the Rozgar Mela has become a powerful national institution which ensures transparency and merit-based time-bound recruitment.
7: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री 4.0 जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स मशीन लर्नर्स लर्निंग इंजीनियर्स क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स India is preparing our young people to provide leadership in that area.
3: Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting, L. Murugan, has said that the government is committed to realizing the vision of Vikasit Bharat by 2047. Addressing the Rozgar Mela at ICF Chennai, he said that under the leadership

0: public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
3: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट

0: परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों हाथों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से

0: फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप नेपाली कार्यक्रम दिल्ली के लिए।
1: नेपाली प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेछौ। समय यस बेला दिउँसोको 2:30 भयो। अब श्रोतालाई सुनाइरहेछौ लोक तथा आधुनिक गीत। प्रथम सुन्नुहोस् यो लोकगीत चन्द्रदीप वाइबाको आवाजमा।

को आवाज में सलील चौधरी के संगीत शब्द गुलजार को अब सुनोस मासूम खिंग लता मंगेशकर को आवाज में संगीत आरडी बर्मन को शब्द गुलजार को

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बज रहे, संपन्न होती है आज की ये प्रसारण सभा। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन प्रसारण सभा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: 200 नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था। रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती में आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था। तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में हुआ,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
2: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
2: ओके,
3: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर। बहुत
2: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
3: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी, उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
3: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी।
2: हाँ।
3: तो उसी तरह से कि कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहा ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहा ले आए।
2: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
3: कहा ले आए राजा पहाड़िया में,
2: मतलब बुंदेलखंड,
3: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहा ले आए, कहा ले आए राजा पहाड़िया मेरे का ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
2: तो मजा आ गया मुझे,
3: बहुत ही मजा आया, मतलब बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव। तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
2: अच्छा।
3: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
2: अरे
3: मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय,
2: ठीक है।
3: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
2: तो बुंदेली में था ये।
3: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा।
2: हाँ।
3: तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफी बड़े एक्टर
2: हैं, पन्ना के ही
3: है। पन्ना के ही हैं। तो वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-star होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है

0: बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने, मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुँचना है।
1: डायरी में लिख गया?
0: हाँ, तो मैं लिख लिया अभी मुझे पहुँचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: से आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी,
1: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी,
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गाँव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, गाना सुनता तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए,
1: क्या बात है।
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके आते हैं।
0: जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को, बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी, गुंडा, जो भी CD पे जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं
1: जी,
0: और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो
1: जी,
0: तब तक NSD में हैं
1: जी,
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं
1: जी,
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है
1: जी, जी,
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी,
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुँचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th class में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुँच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पर पहुँचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है, बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10th class में पढ़ता हूँ, तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10th class में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा, मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 26-26 फोन हुआ करता था,
0: हाँ वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस
1: रिकॉर्ड कर दो, एक मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब,
1: और तुम अनुशासित हो,
0: एक मिनट में सब
1: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है, मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो मैं कॉलेज में, इस शहर में था
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ, फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो, आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो, तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूँ। अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा?
0: बिल्कुल।
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूँगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
0: रोशनपुरा चौराहे,
1: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा हाँ। मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया।
0: पहले हेमंत आया,
1: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदिल है, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो तो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, अलगदा के उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीज़ें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
0: जरूर।
1: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: क्या बात है।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
0: बिल्कुल।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
0: वाह वाह,
1: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: वाह वाह।
1: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने लद्दा मुखा मिला जाए।
0: कहते हैं देवेंद्र
1: उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहाँ से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
0: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
1: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था और 10 रुपये का 5 रुपये का नमकीन का एक पैकेट

0: भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीज़ें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस
0: वहाँ
1: ये
0: से
1: खाना हो गया।
0: खाना हो गया। और वहाँ से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहाँ पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुँचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था। ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में मैं, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। मेरी भाषा का बहुत ख़राब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत ख़राब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे। वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पर गाली मिलती थी। और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, मैं यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक MP स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर MP स्कूल ड्रामा के लिए एग्ज़ाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूज़िक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूज़िक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया, सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए,
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पक्का पक्का
1: तो
0: चलेगा।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार गाना
0: गाना
1: है।
0: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा।
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसा कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
0: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड और
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
0: हाँ,
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया। मैंने बोला मैंने दिया था, तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कि हो गया, तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके,
1: और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो गया
0: और वहीं वो
1: धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक। मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे तो वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया ये? हाँ, बहुत
1: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
0: हाँ,
1: तो लोग हंसते थे।
0: हाँ,
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ,
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके। मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
0: शक को साफ बोल रहे हो,
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
0: हाँ,
1: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
0: हाँ,
1: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
0: हाँ,
1: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था।
0: हाँ,
1: शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके ओके,
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवत सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते हैं इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते, तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है।

0: ऐसा करके शुरू हुआ पूरा
1: तो
0: पूरा।
1: फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल,
0: बंसी कौल जी भी नाटक करते थे, NSD में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा।
0: हाँ तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का मन, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
1: वहां
0: हमने,
1: से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, तो वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और MP छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है, और वहाँ पे एक गार्ड रहता है, और वहाँ पे एक फाटक है, और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, और वो मैंने रिकॉर्ड किए, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे, तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं, हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, NSD से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे वो, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छत्र वो केंद्र है। हाँ
1: अच्छा।
0: वो क्योंकि रेडियो का बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज़ चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूज़िक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है, और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल।
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी कबीरी बता देता हूँ कि
1: बिल्कुल।
0: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: बदल
0: दी,
1: दी।
0: बदल दी, उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में

0: होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: वो
0: है,
1: क्या कर
0: तो वो
1: सकता है?
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया गाना। जी जी जी। कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा
1: बेचारा,
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत, मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था,
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी जी।
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं,
1: हाँ।
0: कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल।
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल।
0: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूज़िक और जो लोक है जो फोक है वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है, और दूसरा मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था,
1: सफर है।
0: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदादन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

5.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:04। श्रोताओं, आपके अभिवादन के साथ अब आरंभ हो रही है आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम 33.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्स के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुलभ हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी। आज का युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होता है। भारत विश्वास के सबसे बड़े युवा देशों में से एक है, इसलिए देश के विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में केवल शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के पास व्यवहारिक कौशल यानी कि स्किल का होना भी आवश्यक है। इसी कारण स्किल डेवलपमेंट आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। स्किल डेवलपमेंट यानी कि युवाओं को विभिन्न प्रकार की तकनीकी, व्यावसायिक और व्यवहारिक कौशलों का प्रशिक्षण देना, इससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं और रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक, संचार कला, मशीन संचालन, हस्तकला जैसे कुशल कौशल युवाओं को आधुनिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में सहायता भी करते हैं। आज बेरोजगारी की समस्या एक बड़ा कारण है, यही है कि युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन आवश्यक कौशल नहीं होते हैं। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम इस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। स्किल डेवलपमेंट केवल नौकरी पाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करता है। प्रशिक्षित युवा अपना व्यवसाय शुरू कर दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इससे देश की आर्थिक प्रगति को भी गति मिलती है और समाज में एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। युवा और स्किल डेवलपमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। युवा ही राष्ट्र को प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं, इसीलिए हमें युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें। मिलते हैं गाने के बाद, तो कहीं मत जाइए और सुनते रहिए युवाणी।

वेलकम बैक, मैं हूं सुलभ और आप सुन रहे हैं युववाणी। आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आवश्यक हो गई हैं। इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। इसीलिए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का एक सही तरीके से प्रिपरेशन करना युवाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना, विद्यार्थी को यह तय करना चाहिए कि वह किस परीक्षा की तैयारी करना चाहता है। इसके बाद परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति को अच्छी तरह से समझना चाहिए। सही जानकारी और योजना ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। समय प्रबंधन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। विद्यार्थियों को नियमित समय सारिणी बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए, प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए और कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन और एक अच्छी सामग्री का चयन करना भी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को अनेक शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध हैं। मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने से परीक्षाओं का अनुभव

0: होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से एकाग्रता बढ़ती है। असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। परिवार और शिक्षकों का सहयोग भी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से ही कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति में अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास भी करता है। सही दिशा में की गई मेहनत निश्चित रूप से सफलता अवश्य दिलाती है। मिलते हैं गाने के बाद, तो कहीं मत जाइए और सुनते रहिए युवाणी।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

लोगों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

वेलकम बैक, मैं हूं सुलभ और आप सुन रहे हैं युववाणी। स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि शरीर स्वस्थ हो जाए तो जीवन के हर कार्य को उत्साह और ऊर्जा के साथ किया जा सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपनी सेहत का ध्यान भी रखना भूल जाते हैं, और यही कारण है कि छोटी छोटी बीमारियाँ भी बड़ी समस्या बन जा रही हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेहत का एक विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है। भोजन में हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध और पौष्टिक तत्व शामिल अवश्य करने चाहिए। जंक फूड और बहुत ही ज़्यादा तैली भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। समय पर भोजन करना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नियमित व्यायाम और योग जो है वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुबह की सैर, दौड़ और योग करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और मन भी जो है वो शांत रहता है। इसके साथ ही पर्याप्त नींद भी जो है बहुत ही आवश्यक है। देर रात तक जगना और मोबाइल या टीवी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्वास्थ्य का। तनाव, चिंता और क्रोध से दूर रहकर सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। स्वच्छता भी अच्छे स्वास्थ्य का एक आधार है। हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना चाहिए और नियमित स्वास्थ्य जाँच के लिए बीमारियों का समय पर पता चलना चाहिए, जिससे कि इलाज जो है वो आसानी से हो सके। स्वास्थ्य ही धन है। यदि हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेंगे तभी जीवन का सही आनंद ले पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। मिलते हैं गाने के बाद, तो कहीं मत जाइए और सुनते रहिए युववाणी।

वेलकम बैक, मैं हूं सुलभ और आप सुन रहे हैं शिवाणी। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि पानी में जलता है। प्रश्न एक बार और सुन लें कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि पानी में जलता है, और जवाब है सोडियम। मिलते हैं गाने के बाद, तो कहीं मत जाइए और सुनते रहिए शिवाणी।

वेलकम बैक, मैं हूं सुलभ और आप सुन रहे हैं युवाणी। दोस्तों, हमारा आज का लास्ट सेगमेंट, हमारा आज का सवाल है कि किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है। प्रश्न एक बार और सुन लें कि किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है। और जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि मौसम में बहुत ही तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, तो कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाहर जाने से पहले आवश्यक मास्क और पानी की बोतल, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अनावश्यक ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, बहुत ही ज़रूरत होने पर ही बाहर जाएं, और अगर बाहर जाएं भी तो सुरक्षा के साथ जाएं ताकि आप धूप से बचे रह सकें। इसी के साथ इजाज़त मुझे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी वह साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम एफ 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। ग्रामीण बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम बालवाणी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: लैका लोगन जय हिंद। हाँ, लैका लोगन देख यही नारा के साथे अपन बैठकी शुरू भइल।
3: हाँ,
2: और आप सबके स्वागत बा।
3: बिल्कुल भैया, देखा लैका लोग, सबसे बड़ी चीज कि अब जौन है स्कूल के ऐसे में छुट्टी हो गई बा।
2: हाँ,
3: और घरे घरे लैका लोग अभी है जौन है सोचत हुई है कि चला अब छुट्टी भइल तो इसमें पढ़ाई उढ़ाई ना करे पड़ी। और थोड़ा अपने माय और पिता से भी है कि नहीं है कि तनी घुमा देवल जाए, करा देवल जाए, छुट्टी भइल बा। तो कुछ लोग तो अपने ननिया और यहाँ
2: रिश्तेदारी में जाई
3: है, रिश्तेदारी में जाई है। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसा होल है जो ननिया तो घूमबे कर रहे हैं, पर ओकरे अलावा कुछ ऐसा दार्शनिक, सांस्कृतिक और ऐसा स्थल रहला जहाँ पे जा करके लोग खुश हो रहे हैं और वहाँ के महात्म के बारे में, वहाँ के
2: संस्कृति के बारे में, प्रकृति के बारे में,
3: हमारे देश के जो धरोहर बा ओकरे बारे में भी जानल है, समझल है, और एक तरह से वहाँ पर उल्लास कर रहे हैं, पूरा खुशी मना रहे हैं। तो यही क्रम में अगर बात कर जाए लड़का लोग के कि अपने उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अगर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में अगर बात करल जाए पर्यटन स्थल के बारे में, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे पर्यटन स्थल मौजूद बाट हैं जोने में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता के खातिर
2: जाना
3: जाता है, प्रसिद्ध बा। अगर आप लगले हाथ से अगर देखें, पहला अगर बात करल जा तो अपन गोरखनाथ मंदिर बा, जोन नाथ संप्रदाय के एगो प्रसिद्ध मंदिर होके और जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आवेल है, आस्था के केंद्र के रूप में विख्यात बा और लोगन के यहाँ घूमे ला ताता लगल रहला है लोगन के। ओकरे बाद यही क्रम में भैया अगर देखल जा तो यही देखिए अपने गोरखपुर में ही वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला भी मौजूद बा, जेके तारामंडल भी कहल जाला। और वहाँ भैया घूम के लड़का लोग अपने ब्रह्मांड, सौर मंडल और खगोल विज्ञान से जुड़ल रोचक जानकारी प्राप्त करके एक तरह से विज्ञान के बारे में और सक्षम हो खेल।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो इतना
2: अपने जानकारी के बढ़ाना ना,
3: इतना नहीं बा भैया। अगर आस पास देखल जा बहुत पर्यटन स्थल में बहुत चीज विख्यात बा, जैसे अपन गीता वाटिका मंदिर बा, यही थोड़ा दूरी पे जो है विनोद वन बा, बुढ़िया माई माता का मंदिर बा, ऐसा इसके अलावा भी। और
2: भैया अगर गोरखपुर के अलावा भी बात करब तो एकरे साथे साथे देख तू आगरा बा, एकरे आगरा के ताजमहल बा भैया, एकरे अलावा मथुरा बा, कई चीज बा भैया।
3: सही कहला भैया, लेकिन देखा है तो छूट गए अपने आस पास एक और बड़ा प्रसिद्ध जगह बा, मगहर संत कबीर नगर।
2: हाँ, हाँ,
3: जौन एक तरह से कुशी नगर बा भैया, वो अपन बहुत बड़ा बुद्ध भगवान के रूप में एक जो जौन है देश विदेश के लोग वहाँ है और एक तरह से जो आस्था के केंद्र के रूप में विख्यात बा भैया। वहाँ जाके अपन मन तन खुद 2 मिनट के लिए लगेला कि सब बुद्धमय हो गए बा।
2: बिल्कुल,
3: और वाकई में भैया वहाँ के जो कहल जाला ना कि गैले के बाद रोम रोम जो है एकदम खिल जाला। और उतले ने नहीं, अगर आप मगहर के बात करल जा तो वहाँ भी गैले पे अपने गंगा जमुनी संस्कृति के जोन तहजीब बा, सभ्यता बा, ओकर एहसास होखेला कि कोनो धर्म हो, कोनो जात हो, कोनो संप्रदाय हो, यहाँ सब सबके धर्म एक
2: सब है, समानता है।
3: हाँ, मनुष्य धर्म
2: वैसे भी अपन भारत में हर जाति धर्म के लोग निवास कर रहे हैं।
3: बिल्कुल भैया।
2: तो भैया देखिए अपने बैठकी के और आगे बढ़ावल जा और लड़कन लोगन के ये बात से तो मन मनसाइन भइल, लेकिन तनिक गीत गवन ही हो जाए ताकि लड़का लोग के और मन मनसाइन।
3: बिल्कुल भैया,
2: यहाँ सुन जाएगा गीत।
4: अरे मम्मी का परसों बर्थडे, मैं तो उनके लिए चूड़ा लाना ही भूल गई।
5: राहुल भैया आप क्या लाओगे मम्मी के लिए?
6: मैं आंटी के लिए चूड़ियों का डब्बा बनाऊं।
5: मैंने अपनी एक पोएम बनाई है, सुनाओ।
4: अभी रहने भी दो।
5: लकड़ी की काठी, काठी भी घोड़ा, घोड़े के दम पे समा रहा तोड़ा।

0: ओम भैया, पूरा अपन बचपन याद आ गेल। हम लोग के भी ऐसे लकड़ी के काटी,
1: सही बात
0: काटी पर
1: है।
0: घोड़ा, ये गा गा के बड़ा हमन के खिलले बाटी भैया।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: देखा कहल जाला कि जौन है अभी तक अपने घूमले उमले के बात भइल, पर्यटन स्थल के बात भइल, लेकिन एक चीज भूले ना चाहिए भैया कि जौन एक पढ़ाई के क्रम बने ओके ब्रेक नहीं होए के चाहिए,
1: नहीं
0: मतलब
1: नहीं
0: टूटे के नहीं चाहिए।
1: नहीं नहीं भाई।
0: ऐसा नहीं बा कि अब छुट्टी हो गई बा ते एक को अक्षर पढ़े ना, लेकिन
1: नहीं, ओके, पढ़ाई
0: ते
1: जरूरी है।
0: पढ़ाई जरूरी है। थोड़ा देर पढ़े, एक घंटा पढ़े, एक दुई आधा घंटा पढ़े, लेकिन अपन दोनों एगो ओकर तारतम्यता है,
1: बनल
0: ओकर
1: रहे।
0: बनल रहे, और पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। आई यही नाते भैया कि देखा एगो अपन प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र रहल नालंदा,
1: नालंदा।
0: ओकर का गौरवमयी अतीत बा, कौन ऐसा इतिहास बा ओकर,
1: बिल्कुल
0: यही
1: बिल्कुल
0: बारे में तनी एगो जानकारी सुनल जा।
1: भैया। देखी जब बात ही पर्यटन स्थल के होता तो भैया यही में एकर गौरवशाली इतिहास बा, नालंदा के गौरवशाली अतीत, ए पर जानकारी देते हैं डॉक्टर अनिल कुमार बिश्वा,
0: चला सुने
1: तर
0: जा भैया।
1: लड़का लोग जानकारी लें।
2: बारहवीं शताब्दी के बीच प्राचीन मगध राज्य का शिक्षा विद्यापीठ रहा है, जिसने ज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार किया है। नालंदा शब्द संस्कृत के नालम धंधा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कलम होता है, कलम ज्ञान का प्रतीक है। नालम धंधा यानी कलम देने वाली अर्थात ज्ञान देने वाली। लेकिन चीनी यात्री वेन सांग ने नालंदा नाम की उत्पत्ति के बारे में अलग बात बताई है कि नालंदा नाम का एक नाग के कारण पड़ा जो यहाँ के किसी हद में निवास करता था, परंतु चीनी यात्री के विचार में यह अधिक युक्ति संगत था कि इस स्थान का नाम बुद्ध के कारण पड़ा हो। प्राचीन बौद्ध स्थल नालंदा नालंदा जिला अंतर्गत बड़गांव नामक ग्राम के निकट स्थित है, जो जिला बिहार शरीफ से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण, राजगीर प्राचीन राज्य से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर तथा राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा यह राजगीर बिहार शरीफ व पटना से भली भांति जुड़ा हुआ है। नालंदा रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। नालंदा भग्नावशेष परिसर पर्यटकों के घूमने के लिए प्रातः 9 बजे से सायकाल 5:30 बजे तक खुला रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बौद्ध विहार के रूप में करवाया गया था। एक लंबे समय तक यहाँ बौद्ध विषयों का अध्ययन अध्यापन चलता रहा। विश्वविद्यालय के रूप में इसकी उत्पत्ति गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासन काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की उत्पत्ति का काल 415 से 454 ईस्वी पूर्व है। बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीन यान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के अनेक देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के जन्मभूमि होने के कारण नालंदा का विशेष आकर्षण है। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी तुलना मध्य युग में फ्रांस के क्लूनी और ब्लेयर बॉक्स से की जाती है। तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी व दार्शनिक नागार्जुन इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव की कहानी को बयान करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश का एक ही मुख्य मार्ग था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप मंदिर थे। स्तूप मंदिरों में बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं अपितु कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन, हिंदू और बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे। चौथी से सातवीं शताब्दी के बीच नालंदा अपने उत्कर्ष पर था। तत्कालीन विद्वान आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित किया था। आर्यभट्ट ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ 10 गीतिका, आर्यभट्टी और तंत्र की रचना की, जो आज भी उपलब्ध है। इस विश्वविद्यालय की 9वीं शती से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी। पाल वंश के राजा महायान संप्रदाय के अनुयायी व संरक्षक थे, फिर भी वे नालंदा की बौद्ध संस्थाओं के भरण पोषण के लिए उदार हृदय से दान देते रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे उच्च कोटि के धर्माचार्य हुए जिनका यश दूर दूर के देशों में पहुंचा और वहां चिरकाल तक जीवित रहा। यह कहावत सत्य है कि नालंदा का विशद इतिहास वस्तुतः महायान बौद्ध संप्रदाय का इतिहास है। 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। ह्वेनसांग लंबे समय तक नालंदा में रहा। वह लिखता है कि नालंदा में विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इनमें महायान और महायान संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथ हेतु विद्या, न्याय, शब्द, व्याकरण और चिकित्सा विद्या, आयुर्वेद शामिल थे। इसके अंतर्गत अथर्ववेद सहित समस्त वेद तथा हिंदू धर्म के अन्य शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। ह्वेनसांग के वर्णन से प्रतीत होता है उस समय नालंदा शिक्षा एवं विद्या का अद्वितीय केंद्र था। नालंदा में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का एक भारतीय नाम दिया जाता था। ह्वेनसांग का भारतीय नाम मोक्षदेव था। ह्वेनसांग लिखता है कि उन दिनों प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही हो जाया करती थी, जहां प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को द्वारपाल के प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल इतना अधिक विद्वान रहा करता होगा कि जिसके विवेक के आधार पर छात्रों के प्रवेश सुनिश्चित किया जाते होंगे, उस विश्वविद्यालय के अंदर के शिक्षकों के ज्ञान का स्तर कितना विस्तृत रहा होगा। प्रवेश प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों को आचार विचार और व्यवहार की शुद्धता का अध्ययन अपेक्षित था। यहाँ शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे। ये श्रेणियां योग्यता अनुसार बनाई गई थी। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। ह्वेनसांग के समय विश्वविद्यालय महान आचार्य शिक्षक विद्वान शीलभद्र थे। कई विद्वान आचार्य ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्य लेख उत्कीर्ण था। नालंदा विश्वविद्यालय की एक विशेष देन यह थी कि वहां विद्यार्थी एक दूसरे के निर्माण में सहायता करते थे और इस प्रकार की जीवन सबसे आदर्श कला में यानी बुद्धि की दीप्ति से जागृत एक विद्वत जन समाज के निर्माण में पारस्परिक सहायता करते थे। इतसिंह के अनुसार ख्याति प्राप्त तथा प्रतिष्ठित विद्वानों के यहाँ भीड़ सी लगी रहती थी और वे संभव एवं असंभव तथ्यों पर विचार किया करते थे और अंत में ज्ञानियों द्वारा अपने विचारों की श्रेष्ठता के संबंध में निश्चित होने के बाद अपने ज्ञान की दीप्ति से संसार में यश प्राप्त करते थे। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर दीक्षांत समारोह का आयोजन होता था, जिनमें विद्यार्थियों के सामाजिक गुणों, स्थिति आदि को देखते हुए उपाधियां दी जाती थीं। बिना पिटक के नियमानुसार विद्यार्थियों को धन स्पर्श वर्जित था। नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में 3 बड़े पुस्तकालय थे, जिनके नाम रत्न रंजक, रत्नोधि, रत्नसागर थे। इन पुस्तकालयों के एक एक भवन में 9-9 तल्लों का हुआ करता था, जिनमें लाखों महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद थे। नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने के सैकड़ों साल बाद विख्यात पुरातत्वविद सर कनिंघम ने इस प्राचीन विश्वविद्यालय को खोज निकाला। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई 1870 में एम ब्रेडलेने ने शुरू की थी और उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के उक्त स्थान पर होने के संकेत दिए थे।
1: भैया खूब निम्न ही जानकारी रहल है। नालंदा का गौरवमयी अतीत पर जानकारी देते रहे डॉक्टर अनिल कुमार विश्वात, इनके दिए धन्यवाद। और लगे हाथ आए सुना जाएगा गीत।

0: भैया देखी खूब निमन गीत गौने भाई।
1: हाँ भैया, लेकिन देखा भैया ऐसे में जो मौसम बा अपन ना, अब गीत गाने के बाद तनि ओहू बारे में जानकारी देल बहुत जरूरी बा, काहे से कि गर्मी खूब पड़त बा ऐसे
0: भैया देखी
1: में।
0: जानकारी मतलब ही नहीं बा कि लड़का लोग नहीं जानता, मैं जानत हूँ बस हमन के काम बा याद दिलावल।
1: हाँ अरे लड़का लोग के भी मतलब जानकारी देवल जरूरी बटले बा कि भाई देखा अपने गर्मी के मौसम में खूब पानी पिया
0: हाँ
1: और जहाँ तक हो सके फूल बांह के कपड़ा पहन के सब इन्हें एयर ओवर
0: धूप
1: घूमे।
0: में न निकला।
1: हाँ धूप में नहीं निकला, और निश्चित तौर पर अगर ये सब सुरक्षा से अपन अगर करबा तो बीमार भइले से बचबा।
0: स्वस्थ फिट रहे भैया।
1: हाँ
0: देखी बातचीत और होत लेकिन समय के अपन सीमा होला तो हमनों के समय से बदल
1: बदल
0: रही।
1: बाटी।
0: एक साथ हमन के दे अनुमत। लैका लोगन
1: जय
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभिग्रमण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बालवाणी मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजना चाह रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार, पहले भोजपुरी में, बाद में हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जयपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से 19वां रोजगार मेला में कई गो सरकारी विभागन आ संगठन में 51,000 से बेसी नया नियुक्त नौजवानन के नियुक्ति पत्र बटलें। मेला के आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सतह ही देश भर के 47 जगहिन पर कैल गई। ए मौका पर प्रधानमंत्री कहले कि सरकारी नौकरी लोगन के जिंदगी के बेहतर आ आसान बनौले के महत्वपूर्ण जरिया हो। श्री मोदी कहले कि देश अपने कर्म योगियन पर भरोसा जतौले हवे आ अब इनकर जिम्मेदारी हो कि वो अपने लगन आचरण और रोजाना के काम से वो भरोसा के मान रखें और ओके औरियो मजबूत करें। प्रधानमंत्री कहले कि पूरा दुनिया भारत के विकास यात्रा के हिस्सा बने खातिर उत्सुक बा।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री कहले कि हर भारतीय देश के विकसित भारत बनौले के संकल्प के साथ कार्य कर रहल है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पूर्वोत्तर रेलवे में नौकरी मिलने पर गोरखपुर के रहवैया आयुष यादव पारदर्शी चयन प्रक्रिया बदे प्रधानमंत्री के धन्यवाद ज्ञापित कर लिया हवे।
2: मेरा नाम आयुष यादव है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं अनी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी प्रक्रिया रही है वो पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके मार्गदर्शन में जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ योगदान कर सके, इसके लिए अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे हम।
0: पूरा देश से चुनल गई नया कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय आ उच्च शिक्षा विभाग जैसन कई गो अलग अलग मंत्रालय आ विभागन में आपन सेवा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर से बढ़ोतरी भइल है। पछिला 10 दिन में तेल के दाम में ई तीसर की बेरी बढ़ोतरी भइल है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में करीब 86 पैसा और डीजल करीब 91 पैसा महंगा भइल बा। प्रदेश के महोबा जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज भइल बा। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से शहर के कोतवाली में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह के सतही करीब 3 अज्ञात समर्थकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावल गई बा। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबला पंजाब किंग्स से हुई। ई मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में संझा 7:30 बजे से खेला जाये। काल ही राती सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 55 रन से हरौले रहल। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप जारी बा। कई जिलन में तापमान अजुओ 42 डिग्री सेल्सियस से बेसी दर्ज कल गई। मौसम विभाग अगला 3 दिन बदे प्रदेश के पूर्व और पश्चिम इलाकन में दिन में लू चलने के चेतावनी जारी कैले है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह बतौले कि ये दौरान कई इलाकन में तेज धुरियाल बेरियो चलने के अनेसा बा।
3: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: प्रदेश के बाराबंकी जिला के फतेहपुर थाना इलाका में

काली रात देर रात भइल सड़क दुर्घटना में एक परिवार के 4 लोगन के मौत हो गई, वहीं एक जने के हालत गंभीर बा। मौका पर पहुंचल पुलिस घायल लोगन के अस्पताल में भर्ती करौलिस। दुर्घटना ओ समय भइल जब बिजली कटने के नाते एक परिवार के सज्जो जनी सड़क के किनारे सुतल रहले आ बेकाबू डंपर के चपेटा में आ गइले। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पूर्वोत्तर रेलवे में नौकरी मिलने पर गोरखपुर निवासी आयुष यादव ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
2: जी, मेरा नाम आयुष यादव है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं अन्य रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी प्रक्रिया रही है वो पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके मार्गदर्शन में जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ योगदान कर सके, इसके लिए अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे हम।
0: पूरे देश से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसा और डीजल करीब 91 पैसा महंगा हुआ है। प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से शहर के कोतवाली में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह सहित करीब 30 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 55 रन से हराया था। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान आज भी 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
3: प्रदेश में

मेढी में 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम खेती बारी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
4: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: पंचो जय जवान जय किसान। हाँ किसान भाई, यही नारा साथे देखिए अपन बैठ की शुरू भइल अपने कार्यक्रम में, आप सबका स्वागत बा।
6: बिल्कुल
5: भैया, देखिए ये समय जौन बा कि अपने यहाँ गवई में खेती बाड़ी के काम अपन किसान भाई लोग लगल बाटे, काहे से कि अब धान के बुआई के शुरुआत।
6: बिल्कुल भैया, धान के रोपनी सीजन भी आवत बा।
5: हाँ,
6: लेकिन उससे पहले लोग जराई डली है, तो जराई डली में भैया सबसे महत्वपूर्ण चीज होला कोनो भी चीज के उत्पादन के पहले होकर बीज कैसन बा।
5: बिल्कुल भैया, बीज ते बात जोन कहला तो कहले मतलब ये भैया कि जब आप बीज लेई तो ओके भाई खेती बाड़ी तो सब करता, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में अपन किसान भाई लोग गलत बीज बो देने जौन से पैदावार ना होला, बाद में कहना भैया हम तो इतना मेहनत कई नहीं।
6: हाँ।
5: लेकिन ओकर लाभ ना देखे।
6: बिल्कुल सही कहला भैया, तू जोन बात करत वही सारा हम समझ गयी। अगर उत्तम फसल के पैदावार और नुकसान से बचे के बा तो भैया बीज हमेशा कोनो पंजीकृत या सरकारी डीलर से ही खरीदे के चाहिए।
5: हाँ, एकरे साथे साथे पैकेट बंद जोन बीज मिले ओके ले,
6: ओके लेवे के चाहिए। ऊपर जोन है फसल के नाम, फसल के किस्म, लाट नंबर,
5: अंकुरण
6: प्रतिशत और उत्पादन तिथि के साथ साथ
5: एक्सपायरी
6: डेट भी स्पष्ट रूप से अंकित होए, तब लेवे के चाहिए भैया।
5: हाँ, मतलब कुल मिला के पूरा जानकारी लेके तब बीज ले।
6: हाँ, कहे से भैया कुछ लोग ऐसा भी रहे जो पुरान बीया रख ले रहे और ओकर एक्सपायरी डेट वो भी खत्म हो जाए,
5: खुलल रहला भैया,
6: खुललो रहला,
5: बड़ा बढ़िया भाई ले लो।
6: हाँ, अब कहीं ना कहीं भैया वो नुकसान करी और तू जोन तू फसल में अपन मेहनत खून पसीना प्लस पैसा लगावत बाटा, वो कहीं न कहीं तुहार नुकसान के रूप में हो जाए। तो सबसे पहले तो जोन बात ही भाई ले ई तो होइक चाहिए। दूसरा चीज जोन एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हो बा कि जोन बीज के अंकुरण प्रतिशत बा, उसमें बीज में बात भई लेकिन वो कितना प्रतिशत बा, कितना बढ़िया से एकर जोन उत्पादन हुई, ए पर विशेष ध्यान देवे के

0: और वहाँ पूछ भी लेबे के चाही भैया एकर पैदावार कैसन बा।
1: देखो भैया पूछल तो अलग बात हो गए, मान ली दुकानदार हम उनके बेचे के बाद भैया बताइए, लेकिन आपन भी जानकारी रखी। अब एकरे साथे साथे अगर भैया बुआई से पहले बीज के शोधन कइल जाए, एक बात और है कि मिट्टी के भी जांच करा लिया जाए।
0: बिल्कुल, मिट्टी की जांच भी अगर सही से हो जाए
1: हाँ, तो उसे ही पता चल जाए में कौने पोषक तत्व तो के कमी बा, कौने के ज्यादा बा, ओकरे हिसाब से बीज बोई तो और बढ़िया लाभ देखे के मिले।
0: बिल्कुल भैया, कहतवार कहे मतलब यह है बा कि मौसम और खेत की मिट्टी के हिसाब से, क्षेत्र में होने वाली बीमारी के हिसाब से कि भैया कोने जो न बीमारी भी है यहाँ मिट्टी में भैया संभावना रहेगी, वह हिसाब से बीज चुने और जब बढ़िया बीज रही तो उत्पादन भी बढ़िया हुई
1: और ओकर बढ़िया लाभ मिली।
0: बढ़िया लाभ मिली
1: तो लेकिन भैया आप देखिए बातचीत और हुई, लेकिन अपने बैठकी के आगे बढ़ावल जा। और देखा ये समय भैया जौन बा कि गर्मी के समय चलता है,
0: हाँ
1: तो गर्मी में भैया बहुत से ऐसा किसान बाटे कि अपन बागवानी वगैरह भी कैले रहें।
0: बिल्कुल, और आम का बगीचा तो इसमें बहुत प्रसिद्ध रहे।
1: हाँ तो ये लिए भैया आई यही पर एगो बातचीत सुनल जा कि आम के बाग में गर्मी में सामयिक का, ये पर जानकारी देते हैं डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव और इनसे बतियावत हमें भैया विनय कुमार, तो अपन किसान भाई जानकारी लें।
2: आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव। आप हैं वरिष्ठ उद्यान वैज्ञानिक महायोगी गोरक्षनाथ, कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज जनपद गोरखपुर। डॉक्टर साहब देखी, अपने यह पूर्वांचल में आम का ज्यादातर प्रजाति लगावल जाले, कलमी है, बीजू है, व्यावसायिक है, लोग आंगन में लगावेलन, लोग दरवाजे पर लगावेलन, और आम गर्मी खातिर फलन का राजा है। तरह तरह का प्रजात है, खाए वाली, चूसे वाली, अचार डाले वाली और फल संरक्षण करे वाली, अमावट बनावे वाली। लेकिन एक समस्या ये आवेले कि फल तो बहुत लगेला, अंत में पाकल आम बहुत कम लोगन के मिल पावेला, कभो आनी गिराई कभो पानी गिराई, और तो और सूखले पता ना चल पावेला कि हमार कुल फल गिर कैसे गई, और एकरे खातिर यह समय कौन कौन ऐसा काम बा कि न एमे कोनो रोग लगे आ न फल गिरे आ एकर आकार बड़ा होखे।
3: नमस्कार किसान भाइयों, आम एक हमारा जो है स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल और सदाबहार वृक्ष है। इस वृक्ष का यही एक विशेष महत्व है कि हमारे चाहे किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में हो या अन्य जगहों पे हो, इस वृक्ष के पत्तों का भी इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि ये सदाबहार वृक्ष है और खुशहाली भरा वृक्ष है। और हमारे पूर्वांचल की धरती पे आम की विभिन्न प्रजातियां जो हैं वो यहाँ उगाई जाती हैं, हमारे बागवान भाई लगाते हैं। जो कुछ अर्ली प्रजातियां हैं जैसे कि गौरजीत है, बॉम्बे ग्रीन है, मध्य की जो प्रजातियां पकने वाली वो दशहरी, लंगड़ा, और देर से पकने वाली चौसा है। लेकिन इन सभी प्रजातियों की जो बागवान भाई बागवानी करते हैं, इनमें एक जो सामान्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है या समस्या की बात है वो है कि फल जो आता है आने के बाद वो छोटे होने पे गिरने लगता है, पकते समय हमारे बहुत कम मिलते हैं। तो इसमें इस मौसम के लिए इन आम की प्रजातियों के बागवान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जो बाग हैं हमारे, उन बागों में नमी की पर्याप्त व्यवस्था रखें, इसके साथ ही साथ उर्वरक का प्रबंधन करें। उर्वरक प्रबंधन में जो हमारा छोटा पौधा है उसकी उम्र के हिसाब से, और यदि 10 वर्ष या उससे अधिक की उम्र का पौधा है तो उसमें हम ये सलाह देते हैं कि 500 ग्राम नत्रजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास प्रति वृक्ष की दर से ये मिलाकर उसके थाला बनाकर देते हैं, तथा जो पौधे का हमारा मेन तना है उससे 1 से 1.5 फुट दूरी पे इसको मिला देते हैं। साथ ही साथ मिलाने के बाद पानी लगा देते, पानी सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने से ये उर्वरक घुल के पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ पोषक प्रबंधन तो आवश्यक है, इसके साथ साथ कुछ कीड़े भी हमारे इस बने हुए फलों पे या पौधों पे आ जाते हैं, तो इन फलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और फलों को प्राप्त करने के लिए इसमें हम क्लोरपाइरीफास नामक की दवा जो है वो छिड़काव कर देते हैं, जिससे आम के फल भेदक कीट का जो है प्रभावी ढंग से नियंत्रण हो जाता है। शुरुआती अवस्था में कुछ अन्य कीट, भुनगा कीट आदि भी लगते हैं, तो उसके लिए हम इमिडाक्लोरपिड नामक दवा का 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर की दर से मिला के इसका छिड़काव करते हैं।
2: डॉक्टर साहब, आमे में आमनों का घरे पेड़ लगल बाटे, फल लगेला, तो कुछ आम तो सोलहग होई, बढ़िया होई, कुछ आम ढेपी पर टेढ़ रही, ओजा धीरे धीरे काला हो जाई, सूखी, कबो कबो ओकर गुठली भी बाहर आ जाले, जो उनकी अभी ओकरे ऊपर करेर नहीं बन रहेला, बिया आधा बाहर रही आधा अंदर रही, काला होई और वहाँ पिलपिला होके धीरे धीरे वो रसुआ निकलत रहेला, कुछ आधा फट जाई और कुछ काला होके धीरे धीरे सिकुड़त रहेला, जैसे ज्यादातर फल बर्बाद होला आ लेढ़िया लेढ़िया सूख के वो गिर जाला, कोनो काम लायक ना रहला, ना खटाई बन पावेले ना अचार बन पाई, आ पकला के तो बातें छोड़ दी।
3: जी बहुत अच्छा। ये आम की जो एक बीमारी है जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं वो कोइलिया बोलते हैं, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, आम का आंतरिक सड़न या कोइलिया नाम की बीमारी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आप आम जो है निचला हिस्सा भूरा या काला होकर सड़ने लगता है, इसकी सतह जो एकदम चमड़े की तरह हो जाती है, अक्सर इस तरह की जो समस्या है वो वहीं पे पाई जाती है जब हमारा आम का बाग जो है वो किसी ईंट भट्टे के आसपास होता है। तो ईंट भट्टे के आसपास अगर आम का बाग है और इस तरह के उसके सड़न और काले होने की, भूरे होने की समस्या आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पेड़ पे फल मटर के दाने के बराबर आ जाएं, तब हम बोरेक्स को 6 से 8 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव वृक्षों पे करा देते हैं। जब हम इस बोरेक्स नामक दवा का 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो ये जो कोयलिया विकास है या आंतरिक सड़न रोग है, इससे हमारे फल जो है वो काले और इस तरह की समस्या से दूर रहेंगे। इसके साथ ही साथ एक जो हमारे फल वृक्षों में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जब हमारे फल पकने लगते हैं और जब हम फल काट के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जो सूढ़ी नुमा कीड़े निकल आते हैं जो कि या छेद हो कर देता है, वो फल मक्खी की वजह से होते हैं। इस फल मक्खी के बचाव के लिए अगर हम किसान भाइयों आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि फेरोमोन ट्रैप आता है जो कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के तहत है। इस फेरोमोन ट्रैप का जो अगर आप 15 फेरोमोन ट्रैप ये लगा दिए जाते हैं, इसमें नर जो है वो आके इसमें फंस जाते हैं, मादा की गंध जो है इस ट्रैप में लगी होती है और उसमें आके नर आकर्षित होके इसमें इकट्ठे हो जाते हैं और उन नरों को हम एक साथ इकट्ठा करके कहीं जमीन में दबा देते हैं। तो इस तरह से इस फल मक्खी का जो है हम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के तहत नियंत्रण कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक जो है हम प्रलोभन चारा बनाते हैं। प्रलोभन चारा क्या है? प्रलोभन चारे में हम मेथाइल यूजिनॉल 1.1% और मैलाथियान 0.1%, इस दवा के घोल को एक साथ मिला लेते हैं और बाग में जो है वो जगह जगह अप्रैल से जून के महीने में जगह जगह डब्बों में लगा देते हैं। ये डब्बे जो हैं इससे इसमें नर कीट आके आकर्षित होके नर मादा सभी कीट आकर्षित हो जाते हैं और इस तरह से ये हमारे कीटों का जो है फल मक्खी के कीटों का नियंत्रण हो जाता है।
2: डॉक्टर साहब, पानी दिहला से और का निराई गुड़ाई कभी जरूरत पड़ेला?
3: किसान भाइयों, हमारे बागवान भाइयों को ये जरूर है कि अपने बाग की जो है वो साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। जितना कीड़ा एवं बीमारी है ये हमारे बाग के अगर आसपास सफाई नहीं है, जंगली पौधे या खरपतवार हैं, तो उनसे ये कीड़े पनपते हैं और उसके बाद जैसे ही उनका अनुकूल मौसम आता है हमारे फलों पे आ जाते हैं और फल वृक्षों पे आ जाते हैं। इसलिए हमारे जो बाग हैं उनकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें तथा पौधे के आसपास जो है वो थाला बना के गुड़ाई भी कर दें, जिससे खरपतवार ना जमने पाए।

0: या जो कीड़े हैं उन कीड़ों के अंडे एवं लार्वा वगैरह भी उस गुड़ाई निराई से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम कीड़े एवं बीमारियों का एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के तहत स्वतः ही नियंत्रण कर लेते हैं।
1: बड़ा फल वृक्ष जौन बाना आम कटहर लीची यह तरह से एकर सिंचाई कितना दिन पर करे के चाही ताकि फल न फटे आ न गिरे।
0: सिंचाई का जो हमारा आवश्यक समय है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि लगभग हम अगर एक हफ्ते बाद अगर सिंचाई कर देते हैं, 7 से 8 दिन के बाद अगर हम इन पौधों पे थोड़ा पानी का सिंचाई का प्रबंध करेंगे तो नमी बरकरार रहेगी, और नमी यदि बरकरार रही तो हमारे फलों की गिरने की समस्या भी कम होगी और फलों का आकार भी बढ़ेगा।
1: डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, आप इतना बढ़िया जानकारी देनी समझा समझा बुझा बुझा कि आम के बाग में इस समय कौन कौन सामयिक कार्य कैल जा ताकि अच्छा उत्पादन मिले, आम के फल में मिठास बढ़े, आम के कम से कम फल गिरे, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई खूब निम्न ही जानकारी रहले, आम के बाग में गर्मी में सामयिक कार्य पर जानकारी देते रहनी है डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, इनसे बनी बतियावत रहनी है भैया विनय कुमार, तिनके दिए धन्यवाद। और आई सुनल जाए एगो लोकगीत।

0: चाहत पुराई दे बना हो धीरे धीरे हम करा
1: भैया खूब निम्न निम्न मन साइन भइल। और देखिए भैया अपने यहाँ गवाई में किसान भाई लोग खेती बाड़ी के साथे ही बागवानी पशुपालन के काम कर रहे हैं।
2: बिल्कुल भैया।
1: तो भैया यही पर एगो पशुपालन पर बात हो जाए कि अपने यहाँ मतलब
2: भेड़ पालन
1: भेड़ हाँ तो भेड़ कैसे पाली तो यही पर बातचीत होगा। भेड़ पालन से लाभ ये पर जानकारी देते हैं डॉक्टर के पी सिंह इनसे बतियावत हैं देवता प्रसाद पांडे तो अपन किसान भाई जानकारी लें।
3: भारत जैसन कृषि प्रधान देश में पशुधन अधिक महत्व रखाला। अगर गांव के चर्चा कही जा तो कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन जौन है वो रीढ़ के है। काहे के कि खेती अपने पशुपालन पर ही निर्धारित है। अगर पशुपालन नहीं होता तो अच्छे ढंग से खेती नहीं हो पाई, और अगर खेती होती या पशुपालन नहीं होता तो ये समझ लिया कि पशुपालन भी अच्छे ढंग से नहीं हो सकेले। तो ऐसने दशा में पशुपालन और खेती के मिला जुला संबंध है, इसलिए ओकर पालन होए चाहिए अगर कृषि उत्पादन बढ़ा दे। अपने यहाँ खास तौर से देखल जा कि गाय भैंस के ही पालन बड़े पैमाने पर होला। ओकरे साथ ही अगर बकरी और भेड़ पालन भी कर लिया तो हम समझत आते कि सोने में सुहागा के काम करी, लेकिन कम एकर पालन होला। आज यही विषय पर जानकारी देवे खातिर अपने बीच डॉक्टर के पी सिंह जी आये है कि भेड़ पालन से कितना लाभ मिल सकला। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई लोग अपने गाय भैंस के साथ अगर भेड़ पालन करत हैं तो क्या ऐसे लाभ उनके मनचाहना मिल सकला?
4: जी बिल्कुल मिल सकता है। भेड़ पालन अपने देश में विश्व के जितनी भी संख्या है उसका केवल 4% ही भेड़ पालन किया जाता है। मतलब कि अभी यहाँ भेड़ पालन पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, और ये बहुत बढ़िया व्यवसाय है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। बहुत हल्के मैनेजमेंट से ही इस काम की भेड़ पालन की शुरुआत की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि जो भेड़ है वो 10 महीने में ही वयस्क हो जाती है। वयस्क मतलब कि बच्चा पैदा करने की उसकी क्षमता हो जाती है। 8-9 वर्ष इसकी औसत आयु होती है, तो एक भेड़ से आप 8-9 बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। कहने मतलब बहुत कम पूंजी में अधिक आप फायदा उठा सकते हैं।
3: देखिए बकरी जौन है जौन पालन लोग भले या बकरी जौन है जाति ये पौधन के नुकसान पहुंचा देले, काट देले और सुनल जाला कि काट देने के बाद जौन है पौधा वहां से फनगा नहीं। तो भेड़ अगर अब खान पान करता तो वो कोने तरह के खान पान को के मिलाला जौने से कि का नुकसान भी हो सकला समाज के या किसान भाई के कि या कि वो उसमें कोई नुकसान नहीं हुई।
4: बिल्कुल बहुत सही बात आपने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ पौधे अधिक होने चाहिए, तो बकरी उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और भेड़ जो है सरफेस ग्रेजिंग मैंने मतलब वो जमीन के सतह वाली जो घास है उसी को चरती है और उसी से अपना जीविकोपार्जन करती है, तो ये निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी भेड़ पालन ज्यादा अच्छा है।
3: और एक चीज देखल गया डॉक्टर साहब कि अपने यहाँ कई तरह के जोन है, कुछ मैदानी भाग हैं, कुछ पहाड़ी भाग हैं, कुछ पठारी भाग हैं, और हम समझते हैं कि भेड़ पालन के काम तो कुछ न कुछ हर क्षेत्र में होला। का एकर कोनो विशेष जाति हर क्षेत्र के लिए होले कि एक तरह के जाति जोन है हर जगह ओकर जोन है पालन हो सकला?
4: भेड़ पालन जो किया जाता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जब किया जाएगा तो उसका ऊन का क्वालिटी तो अच्छा होता है।
3: अच्छा,
4: वहां पर सर्वाइव करने के लिए जो भेड़ की जातियां होती हैं जैसे मेरिनो जात, ये जो है बहुत महीन ऊन पैदा करती है और इससे कपड़े हमारे स्वेटर ये सब बनते हैं। और जहां पर गर्मी वाला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हुआ या अपने उत्तर प्रदेश के जालौन और ये क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र हुआ, यहां पर मोटे ऊन पैदा करने वाले भेड़ की जातियां होती हैं। यहां पर बीकानेरी जात की नस्ल अपने यूपी के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। वहीं जब उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहां पर मेरुने जात के जो है भेड़ का जात है वो रिकमेंड किया गया है। गड्डी गुरेज ये सब मोटे ऊन पैदा करते हैं, तो इसलिए इनको जो जहां पर ज्यादा गर्म क्षेत्र है उस जगह पे। इसके अलावा कारपेट में भी ऊन प्रयोग होता है, उसके लिए विशेष रूप से नाली बीकानेरी मागरा इन जातियों को जो है हमारे विभाग ने रिकमेंड किया है।
3: इनका पालन कहाँ होला?
4: ये जो शुष्क वाले क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में होता, मतलब गर्मी वाले क्षेत्र में।
3: गर्मी वाले क्षेत्र में सिर्फ हम जानते हैं डॉक्टर साहब जो भेड़ बाटे इनका दुइये माने रखा ला, एक तो मांस के क्षेत्र में एकर पालन होला और एक ऊन निकलने के क्षेत्र में पालन
4: जी, जी।
3: का मांस ले जौने से लेवे बा का ओकर प्रजात कुछ और होले कि इनकर मांस ही लिया जा सकला जौन की ऊन अच्छा दे ले।
4: नहीं, हर हर भेड़ का मांस के उद्देश्य से उनको रखा जाता है।
3: अच्छा।
4: और सबका टेस्ट लगभग एक जैसा ही होता है।
3: अच्छा।
4: तो कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका बढ़िया मीट है या इसका मांस अच्छा,
3: मतलब कहीं भी बात
4: एक जैसा ही है।
3: हाँ, मांस भी उनसे लिया जा सकता है, मांस उत्पादन कही जा सकल जाए। आप ऊन का चूंकि चर्चा कर ली है कि ऊन ऊन कोने तरीके से उनके शरीर से निकाला जाला, ओकर का तरीका है ताकि उनके जौन है गुणवत्ता भी बनल रहे और बाजार भाव में ओकर अच्छा जौन है दाम भी मिले।
4: जो ऊन निकालने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं शेयरिंग। उस शेयरिंग का काम, एक तो जिसके पास कम भेड़ होते हैं तो कैंची से काट लेते हैं।
3: हाँ।
4: और सरकार ने जहां पर भेड़ पालन, जैसे मिर्जापुर का क्षेत्र है, वहां पर ऐसे केंद्र खोल रखे हैं जहां से बैटरी चलित या इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनें हैं और जिसको एक से दो मिनट के अंदर जल्दी से जो है उसके ऊन उतार दिए जाते हैं।
3: अच्छा।
4: तो ये जो है व्यवस्था अपने यहाँ प्रदेश में भी है और देश में भी ऐसे तमाम केंद्र हैं।
3: अगर केहो भाई या किसान भाई या पशुपालक भाई भेड़ पालन कर चाहत हो तो कितना मात्रा उनके पास कै भेड़ से ही शुरू कर सकें पालन ताकि उनके आगे चल के लाभ दिखाई देवे लगे।
1: भैया खूब निम्न जानकारी रहल है,
2: भेड़ पालन से का लाभ होला है पर जानकारी देते रहे डॉक्टर केपी सिंह जी और इनसे बातचीत करते रहना भैया देवता प्रसाद पांडे जी,
1: इनके दिए जाए धन्यवाद।
2: बिल्कुल भैया, और देखा भैया लगले हाथ ही अब समय हो रहा बा कि अपन कार्यक्रम हमन के यहीं पे समाप्त करल जा। हालांकि मन तो ना ही होला कि पंच भाई या किसान भाई लोगों से
1: विदा लिया जाए, लेकिन समय की सीमा होला भैया।
2: बिल्कुल भैया, और वही सब बदल बा और किसान भाई भी पंच भाई हर केहू बदल बा, समय हो रहा बा देवल जा अनुमति।
1: पंचो जय जवान जय किसान।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी मीडियम एफ 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्स के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

0: मोहल्ला गुदरी बाजार कस्बा व पोस्ट रसड़ा थाना रसड़ा जनपद बलिया से ओम प्रकाश गुप्त अपनी पुत्री चांदनी गुप्ता के लापता होने की सूचना देते हैं। चांदनी गुप्ता का विवरण इस प्रकार है। उम्र 21 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फुट 2 इंच। जिस किसी भी सज्जन को चांदनी गुप्ता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे उस जानकारी को इस पते पर उपलब्ध करा सकते हैं। मोहल्ला गुदरी बाजार कस्बा व पोस्ट रसड़ा थाना रसड़ा जनपद बलिया पिन कोड 221712। इस जानकारी को चांदनी गुप्ता के अभिभावक के मोबाइल संख्या 9118008610 पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। मोहल्ला दुबई पोस्ट रसड़ा थाना व तहसील रसड़ा से निशा पति मुन्ना राजभर के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है। निशा का विवरण इस प्रकार है। उम्र 20 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा। जिस किसी भी सज्जन को निशा के बारे में कोई जानकारी यदि प्राप्त हो तो वे इस जानकारी को उनके पति के मोबाइल संख्या 9919847062 व दूसरे मोबाइल संख्या 9792994971 पर उपलब्ध करा सकते हैं। अंगरौली पोस्ट अंगरौली थाना हल्दी जनपद बलिया से निक्की गुप्ता पुत्री शिवशंकर गुप्ता के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है। निक्की गुप्ता की उम्र 18 वर्ष, कद 4 फुट 5 इंच और रंग सांवला है। यदि किसी भी व्यक्ति को निक्की गुप्ता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे उस जानकारी को विक्की गुप्ता के मोबाइल संख्या 7237097071 और दूसरे मोबाइल संख्या 8896321176 पर उपलब्ध करा सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने

0: की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा में आज आप सुनेंगे अंजनी कुमार और उनके साथियों की आवाज में गाए कुछ गीत। पहला गीत किसानी गीत के रूप में।

0: अंजलि कुमार और उनके साथियों की आवाज में गाए इस दातार के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। देश हमार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सत्यम्बदा शर्मा की से उनका काव्य पाठ।
1: मैं कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। कि अमनो अमा की लब पे सदा लेके चली हूँ, अमनो अमा की लब पे सदा लेके चली हूँ, आंचल में मोहब्बत की फजा लेके चली हूँ, अमनो अमा की लब पे सदा लेके चली हूँ, आंचल में मोहब्बत की फजा लेके चली हूँ। अंधेरों में चराग जलाने के वास्ते, अंधेरों में चराग जलाने के वास्ते, मैं घर से अपनी माँ की दुआ लेके चली हूँ। और चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तमाम उलझने खुद में समेट देता है, तमाम उलझने खुद में समेट लेता है, कदम कदम पे कलेजा निचोड़ देता है। कि तमाम उलझने खुद में समेट लेता है, कदम कदम पे कलेजा निचोड़ देता है। आ पिता हमेशा ही बच्चों की बेहतरी के लिए, पिता हमेशा ही बच्चों की बेहतरी के लिए, जवानी में ही बुढ़ापा गुजार देता है। और चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और सुनिएगा। कि पुण्य चलकर कमाने जा रहा है, कि पुण्य चलकर कमाने जा रहा है, पाप मन का मिटाने जा रहा है, कि पुण्य चलकर कमाने जा रहा है, पाप मन का मिटाने जा रहा है, छोड़कर माँ को वृद्धा आश्रम में, छोड़कर माँ को वृद्धा आश्रम में, बेटा गंगा नहाने जा रहा है। सामाजिक विसंगतियों पर चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा, कि तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा, तेरे घर के चरागों को जलाने कौन आएगा, कि तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा, तेरे घर के चरागों को जलाने कौन आएगा। अगर तुम बेटियों को ही नहीं महफूज रखोगे, अगर तुम बेटियों को ही नहीं महफूज रखोगे, तो तेरी सल्तनत आगे बढ़ाने कौन आएगा। चार पंक्तियाँ इसी सिलसिले में और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि दरिंदों को सबक आखिर सिखाने कौन आएगा, दरिंदों को सबक आखिर सिखाने कौन आएगा, हमारे वास्ते जोखिम उठाने कौन आएगा, दरिंदों को सबक आखिर सिखाने कौन आएगा, हमारे वास्ते जोखिम उठाने कौन आएगा, हमें ही जालिमों के सामने खंजर उठाना है, हमें ही जालिमों के सामने खंजर उठाना है, हमारी अस्मिता वरना बचाने कौन आएगा, हमारी अस्मिता वरना बचाने कौन आएगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सत्यम्बदा शर्मा से उनका काव्य पाठ। और आइए अब देश हमार कार्यक्रम में सुनते हैं कवि फतेह चंद गुप्ता से उनका भोजपुरी काव्य पाठ।
2: अब जिंदगी जियल हमार मोहाल हो गईल, अब जिंदगी जियल हमार मोहाल हो गईल, हमरा घरवा में रहल बबुआ के काल हो गईल, हमरा घरवा में रहल बबुआ के काल हो गईल। कुकुर के लैका भले पोस लेत बाना, कुकुर के लैका भले पोस लेत बाना, बुजुर्गन के पोसल अब बवाल हो गईल, अब जिंदगी जियल हमार मोहाल हो गईल, अब जिंदगी जियल हमार मोहाल हो गईल। आगे कविता कि भरी रे जिंदगिया ठेठवली हम जांगर, भरी रे जिंदगिया ठेठवली हम जांगर, बबुआ बढ़स्यब जौ जौ आगर, भरी रे जिंदगिया ठेठवली हम जांगर, बबुआ बढ़स्यब जौ जौ आगर। देवी और देवता के खूबे गोहरौली, देवी और देवता के खूबे गोहरौली, सब भूल गईले खेली खेल जैसे बादर, भरी रे जिंदगिया ठेठौली हम जांगर। कमजोरी खांसी और दम्मा भी दबावेला, कमजोरी खांसी और दम्मा भी दबावेला, शुगर ब्लड प्रेशर कबो किडनी सतावेला, शुगर ब्लड प्रेशर कबो किडनी सतावेला, घर से बाहर खातिर डंडे के सहारा बाटे, बाबा बाबा कहिना तिरहिया देखावेला, बाबा बाबा कहिना तिरहिया देखावेला, कमजोरी खांसी और दम्मा भी दबावेला। उम्र के ग्राफ बढ़ले से संख्या बल खास हो गईल, उम्र के ग्राफ बढ़ले से संख्या बल खास हो गईल, ठिकाना ठौर ना बाटे समस्या खास हो गईल, उम्र के ग्राफ बढ़ले से संख्या बल खास हो गईल, ठिकाना ठौर ना बाटे समस्या खास हो गईल, वृद्धाश्रम रोज खुलत बा ई चर्चा खास हो गईल, वृद्धाश्रम रोज खुलत बा ई चर्चा खास हो गईल, संस्कृति क चरण होता ई बतिया खास हो गईल, उम्र के ग्राफ बढ़ले से संख्या बल खास हो गईल, हाथ कप कपाला गोड़वा भी कप कपात बा, हाथ कप कपाता कपाला गोड़वा भी कप कपात बा, दांत टूट गई लब जबान लपिटात बा, दांत टूट गई लब जबान लपिटात बा, केहू ना चिन्हाला अब आँखिया धूमिल बा, केहू ना चिन्हाला अब आँखिया धूमिल बा, कान के बउहे हाल बात ना सुनात बा, हाथ कप कपाता गोड़वा भी कप कपात बा, दांत टूट गई लब जबान लपिटात बा, दांत टूट गई लब जबान लपिटात बा, केहू ना चिन्हाला अब आँखिया धूमिल बा, कान के बउहे हाल बात ना सुनात बा, हाथ कप कपाता गोड़वा भी कप कपात बा, घटल घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला, घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला, न मतलब बाप से बाटे धर्म के बात ना होला, न मतलब बाप से बाटे धर्म के बात ना होला, घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला, न मतलब बाप से बाटे धर्म के बात ना होला, मेहरिया बाल बच्चन में सिमट गई आज क जिंदगी, खुलल गर बाप के मुहमा तो जूता लात भी होला, घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला, न मतलब बाप से बाटे धर्म के बात ना होला, न मतलब बाप से बाटे धर्म के बात ना होला, मेहरिया बाल बच्चन में सिमट गई आज क जिंदगी, खुलल गर बाप क मुहवा तो जूता लात भी होला, मेहरिया बाल बच्चन में सिमट गई आज क जिंदगी, खुलल गर बाप क मुहवा तो जूता लात भी होला, घटल श्रद्धा घटल विश्वास पूजा पाठ ना होला, बुजुर्गन के अगर यह हाल रह जाई, बुजुर्गन के अगर यह हाल रह जाई, तो बेटा बाप की बीचे न कौनो ताल रह जाई, बुजुर्गन के अगर यह हाल रह जाई, बुजुर्गन के अगर यह हाल रह जाई, तो बेटा बाप की बीचे न कौनो ताल रह जाई, न बेटा बाप की बीचे न कौनो ताल रह जाई, श्रवण के कहानी पर करी विश्वास ना कोई, श्रवण के कहानी पर करी विश्वास ना कोई, बुजुर्गन के घटी सम्मान न कौनो नाम रह जाई, बुजुर्गन के अगर ये हाल रह जाई, बुजुर्गन के अगर ये हाल रह जाई, तो बेटा बाप की बीचे न कौनो ताल रह जाई।
0: अभी आप सुन रहे थे फतेह चंद गुप्ता से उनका भोजपुरी काव्य पाठ। इसी के साथ देसमर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत मालवी निवाड़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ समय बाद यानी शाम 7:20 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एक वार्ता, विषय होगा सूफी साहित्य, वार्ताकार होंगे सुभाष राव। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे तमन्ना बानो के गाए कुछ गीत। साहित्य भारती का प्रसारण होगा रात 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से, और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से।

स्पॉटलाइट प्रसारित किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात 9:15 पर। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 900 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 और 15 सेकंड हो रहे हैं। कुछ पलों में आप हमारे दिल लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोज

0: चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
1: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
5: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमोरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
6: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
1: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से
2: मीडिया वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700001 42

0: 42।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अदालत में। राजेंद्र किशन के लिखे गीत को संगीत दिया था मदन मोहन ने। और आइए अब लता मंगेशकर और आर डी बर्मन को सुनते हैं फिल्म अगर तुम ना होते हुए। शब्द रचना गुलशन बावरे की है और धुन तैयार किया है आर डी बर्मन ने।

और आइए, आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह को सुनते हैं फिल्म एतबार में। हसन कमाल के लिखे गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, अब जो नगमा आपको हम सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म आनंद से। फिल्म आनंद का सबसे पॉपुलर गाना ये, वैसे तो ये गाना किसी अन्य फिल्म के लिए बना था लेकिन वो फिल्म बंद हो गई और इस फिल्म के प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म आनंद के लिए ये गाना खरीद लिया था।

आप सुनने जा रहे हैं फिल्म अनारकली क्या, वो गीत जो अपने आप में लता मंगेशकर ने गाकर बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनारकली में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और धुन तैयार किया था सी रामचंद्र ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। यहाँ तक संगीत का सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा के साथ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक वार्ता। सूफी साहित्य वार्ताकार हैं सुभाष राव।
1: हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा को सूफी साहित्य अथवा प्रेमाख्यान काव्य की संज्ञा दी गई है। सूफी साहित्य का उदय 11वीं शताब्दी के आसपास ईरान में होता है तथा यह 18वीं शताब्दी तक अपने उत्कर्ष को प्राप्त करता हुआ अस्त हो जाता है। ईरान में यह समय अरबी खलीफाओं के सामंती दबाव से मुक्ति का था। इसी वजह से राष्ट्रीयता की धार तेज हुई और सूफियों ने भाषा के स्तर पर भी अपने को स्वतंत्र कर ईरानी भाषा को आत्मसात कर लिया। भारत में यवन आक्रमणकारियों के साथ ही कुछ सूफी महात्मा भी आए तथा वे वेदांत, हठ योग, प्राणायाम जैसे वैचारिक सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित हुए। भारत में सूफी मत के आगमन के संबंध में कुछ और भी मत प्रचलित हैं। इसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से हुआ। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसके दो अर्थ क्रमशः पवित्र एवं ऊन हैं। सादा पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले संत जन उन्हीं ऊनी वस्त्र पहना करते थे। उनके लिए वैभवपूर्ण जीवन परिव्यक्त था, इसलिए उन्हें सूफी संत कहा गया। सूफी मत में प्रचलित है कि मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो तरह की वाणियाँ प्राप्त हुई थीं। प्रथम इल्म ए सकीना तथा दूसरा इल्म ए सीना। इस दूसरी वाणी को ही सूफी संतों ने ग्रहण किया था। भारत में सूफी मत चार संप्रदायों में प्रचलित एवं प्रसारित हुआ। प्रथम संप्रदाय ख्वाजा मैनुद्दीन का चिश्ती संप्रदाय है। दूसरा बहाउद्दीन जकारिया का सुहरा वर्दी संप्रदाय है। तीसरा संप्रदाय कादरी संप्रदाय है, जिसकी स्थापना अब्दुल कादिर ने किया था। अंतिम तथा चौथा संप्रदाय अहमद फारूकी का नक्शबंदी संप्रदाय है। उक्त संप्रदायों में सूफी साधना के विविध वैचारिक आधार एवं विशेषताओं के दिग्दर्शन होते हैं, जिन पर हम आगे विचार करेंगे। सूफी साहित्य में यह प्रबल उद्घोष है कि ईश्वर एक है, वह जगत के बाहर भी है तथा उसके भीतर भी। वह अजन्मा, सर्वव्यापी, अनुपम एवं अवर्णनीय है। ईश्वर परमात्मा और जीव में कोई भेद नहीं है। जीवन ब्रह्ममय है तथा संसार नाश्वर है, जिसमें से निकलने के लिए आत्मा प्रतिपल बेचैन रहती है। सूफी साहित्य साधना का प्रधान तत्व प्रेम है। इस मत में प्रेम के दो रूप, इश्क मजाजी लौकिक प्रेम तथा इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम है। सूफियों ने द्वितीय कोटि के प्रेम को ही अधिक मान्यता दी है। उन्होंने स्वयं आत्मा को पुरुष तथा परमात्मा को स्त्री रूप में वर्णित किया है। इस प्रेम में इतनी पवित्रता है कि आत्मा रूपी पुरुष परमात्मा रूपी स्त्री पर मुग्ध होकर प्रेम के मार्ग पर निरंतर बढ़ता जाता है। सूफी साहित्य में साधना की चार अवस्थाएं बताई गई हैं। सरियत अथवा नाशूत, यह साधना की सबसे निचली अवस्था है, जिसमें सूफी साधक सरियत कुरान में वर्णित विधि निषेधों का पालन करता है। दूसरा तरीकत अथवा मलकूत, साधना की इस दूसरी अवस्था में साधक भौतिक जगत में ऊपर उठकर पवित्र हो जाता है तथा कर्मकांड के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की साधना में लग जाता है। तीसरा मरिफत जबरूत, इस अवस्था में साधक परमात्मा से मिलने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। और चौथा हकीकत लाहूत, साधना की इस अंतिम अवस्था में साधक ईश्वरमय होकर उसी में विलीन हो जाता है। वरिष्ठ साहित्यकार देवी शरण त्रिपाठी ने सूफी साहित्य परमात्मा को हिंदी साहित्य की निधि बताया है। सूफी साहित्य में साधना के सात सोपानों की चर्चा है। अनुताप, आत्मसंयम, वैराग, दरिद्रता, धैर्य, विश्वास, संतोष व प्रेम। इन सभी में प्रेम सर्वोपरि है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम के बिना साधना की सफलता संभव नहीं है। इसमें भी प्रेम का वियोग पक्ष अधिक प्रबल है। महान सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में नागमती वियोग खंड प्रेम वियोग का अनूठा उदाहरण है। सूफी संत एवं साहित्यकारों ने प्रबंधनात्मक शैली को अपनाया है। यह प्रबंधनात्मक शैली भारतीय महाकाव्य और फारसी मसनवी शैली का मिश्रित रूप है। मसनवी उस महा काव्यात्मक शैली को कहते हैं जिसमें किसी तारीखी या हकीकी किस्से का मसलक बयान होता है, अर्थात दीर्घ काव्य में किसी ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथानक को निरंतर वर्णित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी मसनवी शैली को अन्योक्ति काव्य की संज्ञा दी है। सूफी साहित्यकारों ने भाषा के स्तर पर अवधि को ग्रहण किया है जिसमें दोहा चौपाई की क्रमबद्धता है। केवल अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया गया है। साथ ही रचनाएं सर्गबद्ध न होकर घटनाओं के शीर्षक के रूप में विभाजित हैं। सूफी साहित्य की लिपि फारसी है, कुछ काव्य पुस्तकें उर्दू में छपी हैं तथा कुछ साहित्य कैथी लिपि में मिलती हैं। सूफी साहित्य प्रतीकात्मक रूप में है तथा इसमें दोहरे अर्थ लौकिक तथा अलौकिक की ओर संकेत किया गया है। सभी भारतीय प्रेमाख्यान सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रभाव है। इसमें काव्य रोचक व आकर्षक बन गया है और कथा वस्तु में नाटकीयता एवं गतिशीलता आ गई है। कथानक रूढ़ी से तात्पर्य किसी ऐसी घटना प्रसंगादि से है जो एक बार प्रयोग में आने के बाद परवर्ती प्रेमाख्यानों में बार बार दोहराई जाती है जिससे वह रूढ़िगत हो जाती है। जैसे नायक तथा नायिका का किसी मंदिर या बागीचे में मिलन होता है या प्रेमिका का परिचय प्राप्त करते ही नायक राजपाट पत्नी शासन का साम्राज्य सुख वैभव त्याग कर विरक्त भाव से प्रेमिका की खोज में निकल पड़ता है। इसी का परिपालन जायसीकृत पद्मावत में हुआ है। राजा रत्नसेन हीरामन तोते से पद्मावती का परिचय पाते ही अपना सब कुछ छोड़कर सिंघल द्वीप की तरफ कूच कर जाते हैं। वैसे तो हिंदी सूफी कवियों ने भारतीय कथा रूढ़ियों को अपनाया है, किंतु कुछ सूफी साहित्यकारों ने ईरानी कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग किया है। ईरानी रूढ़ियाँ इस प्रकार हैं। प्रेम व्यापार में परियों या देवी का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारी, राजकुमारी का अपने प्रेमी को गिरफ्तार कर लेना इत्यादि। सूफी प्रेमाख्यान काव्य में जीवन के लोक पक्ष में हिंदू संस्कृति का वर्णन गहराई से किया गया है। इन कवियों ने नायक नायिका सामंती ढांचे में ढके हुए भी ऐसे नायक नायिका हैं जिसमें जीवन के समग्र व्यापारों का चित्रण नहीं है, केवल प्रेमाद व्यापारों को ही मुख्यता से लिया गया है। सूफी साहित्य में नायिका को सामान्य स्त्री न बनाकर ईश्वरीय शक्ति के रूप में उपस्थित किया गया है। इन साहित्यकारों की नायिका भोग विलास की वस्तु न होकर परमात्मा की प्रतीक हैं। सूफी साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, उसमें भी वियोग श्रृंगार रस विशेष रूप से प्रबल है। सूफी साहित्यकारों ने अपने साहित्य में खंडन की जगह मंडन को स्थान दिया है। ज्ञानाश्रय संत कवियों की जगह इसमें विरोध का स्वर नहीं है। सूफी साहित्य में आत्मा और परमात्मा के प्रेम मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्ति शैतान की अनिवार्यता स्वीकार की गई है, जिसमें वेदांत में वर्णित माया के समान साधना में व्यवधान डालने वाला तत्व बताया गया है। सूफी साहित्य पर मुख्य रूप से शंकर के अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टता द्वैतवाद, इस्लाम का एकेश्वरवाद तथा नौ अफलातूनी मतवाद के साथ साथ स्वतंत्रतावाद का पूर्ण प्रभाव है। सूफी साहित्यकारों ने अपने काव्य में वैसे तो यदा कदा सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु इसमें प्रिय अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि हैं। सूफी साहित्य में संत कवियों ने गुरु वंदना और आत्म परिचय को भी स्थान दिया है, जो कि मसनवी शैली की मुख्य विशेषता है। सूफी साहित्य में प्रेम को अधिक महत्व देने के कारण रहस्यवादी चेतना मुखरित हुई है। सूफी संत कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण विविध रूपों में किया है। इन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में, अलंकारिक रूप में, मानवीकरण रूप में, वातावरणीय सृजन के रूप में प्रस्तुत कर अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। प्रायः सभी सूफी कवि मुसलमान हैं, कुछ एक ही हिंदू कवि मिलेंगे। इन मुसलमान सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया है। प्रख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे और हिंदू मुसलमानों के दास्ताने हजमा, नल दमयंती की कथा मुसलमान जानने लगे और लैला मजनू को हिंदू, ईश्वर तक पहुँचने वाले मार्ग भी ढूंढने की सलाह दोनों कवि साथ बैठ कर करने लगे थे।
0: सूफी साहित्य। अभी आप इस विषय पर सुन रहे थे एक वार्ता, वार्ताकार थे सुभाष राव। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 900 किलोहर्ट्स के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें।

तमन्ना बानो के गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में रात के 8:44 और 49 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा

0: और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जीराम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की

0: आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
2: We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
1: Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term.
2: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term. And so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. He said the country is also partnering with the various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
1: In the 19th edition of Rozgar Mela today, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra. The project, developed by Nibe Limited, will manufacture 155 mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. The entire production technology and raw materials used in the project are indigenous. Speaking on the occasion, Defence Minister Rajnath Singh said India was once known as an importer of defence equipment, but in the coming years the country would emerge as a major exporter of defence products. Mr. Singh emphasized that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
4: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे भारतीयों के हाथों से बनाएंगे हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे
1: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today informed that Oil India Limited has successfully unlocked a new gas-bearing pay zone in the Dandewala field in Rajasthan. In a social media post,

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी

0: सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर वी के श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग एल्कोहल टोबैको एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कंटिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं। ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों

0: में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
1: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कॉन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
2: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
3: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी की गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये अच्छी जानकारी साबित होगी।
2: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
0: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
4: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
2: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
5: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
0: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
6: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको

0: स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं. सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है. बट ये तो एक थ्योरी हो गया, और थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए. ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है. इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया. उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था. हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया. आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है. एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है. तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है. कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है. जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा. जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए. एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी. और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था. अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे. अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है. बट ये सब जानकारी होना चाहिए.
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है. कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी. इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया. डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं. आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ. के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं. आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ. हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में. आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे. आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है. हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर. आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं. आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ. आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया. आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था. आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे. पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था. और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है. डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ. आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ. आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया.
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए. बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रति आकाशवाणी और इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ. 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी. स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है. संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने

0: हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव खेतों खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका देती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में
2: कल्चरल फैब्रिक ऑफ आवर नेशन। बेस्ट विशेस टू आकाशवाणी फॉर कंप्लीटिंग सक्सेसफुल 90 ईयर्स।
3: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
4: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
3: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
4: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंड चापू ताल।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: Expanded commercial ties.
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुगोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।